श्रोताओ सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि तदनुसार 12 जून सन 2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6 बजने को है समाचार। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियाँ अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना

0: कोरोना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्यबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाज़ों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:05 हुए हैं। विचार मंथन। वो लोग कभी अकेले नहीं होते जिनके पास सदैव श्रेष्ठ विचार रहते हैं। आकाशवाणी जबलपुर से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं प्रेम धवन की लिखी यह भक्ति रचना, जिसे स्वर दिया है शैलेंद्र जोगी ने।

आपने सुनी मातृवंदना और अब आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम का यह पहला भक्ति गीत। स्वर है पंडित भीमसेन जोशी का।

ये भजन आपने सुना हरिओम शरण की आवाज में, और कार्यक्रम के आखिरी भक्ति रचना आपको सुनवा रहे हैं, स्वर है अनूप जलोटा का।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए चिंतन। आलेख श्री गिरिराज चाचा का है और वाचक हैं दिनेश नामदेव।
1: बालक एकदम छोटा है और मचल रहा है। उसके रोने के कारण से अनभिज्ञ माँ उसका मन बहलाकर उसे शांत करना चाहती है। वो कहती है, आकाश में जो चांद है वो आपका मामा है, आप रोना बंद करो, मैं आपको मामा से मिलाती हूँ। ये कहते हुए माँ बालक को अंक में लेकर घर के खुले आंगन में आकर चांद की ओर इशारा करती है। बालक माँ के इशारे पर अपनी दृष्टि दौड़ाता है। उसे वृक्ष की शाख की सीध में चंदा मामा दिख भी जाते हैं। वो रोना बंद कर देता है और ताली बजाते हुए मुस्कुराने लगता है। अंक में मुस्कुराते बालक को देखकर माँ का मन भी आनंद से भर जाता है और अनायास माँ के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर जाती है। हम भी इस विशाल भूभाग में विस्तारित दुनिया, इस वसुंधरा, इस धरती माँ की गोद में बैठे हुए एक छोटे से बालक हैं। हम भी दुख से, निराशा से, परेशानी से, जाने अनजाने कारणों से व्यथित होकर प्रलाप करने लगते हैं, क्रंदन करने लगते हैं। धरती माँ भी हमारे रुदन के कारणों से अनजान है, पर वो हमारे चेहरे को क्रंदन के आगोश से बाहर निकालकर हमारे चेहरे पर मुस्कान बिखेरना चाहती है। इसलिए धरती माँ हमें अपने अंक में लेकर मुस्कुराती प्रकृति से रूबरू करा रही है। निस्संदेह मुस्कुराहट मानव मन की गहराई में बसने वाली वो तरंग है जो थक कर, हार कर, निराश होकर, बैठ कर रुदन करने वालों को खड़े होने के लिए, गीत गाने के लिए और गुनगुनाते हुए चलने के लिए प्रेरित करती है। और जब मुस्कुराहट निराश व्यक्ति के चेहरे पर अटखेलियां करने लगती है तो भवने नवरस लूटे की उक्ति चरितार्थ होती है। चार्ली चैपलिन कहा करते थे कि बस आप मुस्कुराइए, आप पाएंगे कि जिंदगी अर्थपूर्ण हो गई है। कहना ना होगा कि मुस्कुराहट खुशबू है, खुशबू सदा अपने से दूसरे की ओर बहती है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप इत्र की दुकान के बाजू से जाते हैं तब आप इत्र खरीदें या ना खरीदें, पर खुशबू अपने आप आपके पास आती है। खुशबू चुनाव नहीं करती कि उसे किसके पास जाना है और किसके पास नहीं। मुस्कान भी आपके व्यक्तित्व की सुगंध है, इसको हमेशा धारण करिए और बांटते रहिए। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मुस्कुराहट सिर्फ मानव मुख पर ही प्रेरक या संजीवनी स्वरूप में रहती है, जबकि वास्तविकता ये है कि मुस्कान प्रकृति का प्रसाद है। हमारी जीवन शैली बहुत उलझी हुई है, हमारी दिनचर्या बहुत अस्त व्यस्त है और उससे हम त्रस्त हैं, और इसी त्रस्तता के कारण प्रकृति की अमृतमयी मुस्कान का प्रसाद हमें नहीं मिल पाता। मुस्कान मनुष्य को भगवान का अद्भुत उपहार है जो सिर्फ इंसान को ही प्राप्त हुआ है। व्यक्ति के हालात भले ही गए गुजरे हों, पर प्रभु के इस प्राकृतिक उपहार की फितरत ही ऐसी है कि ये कभी ना कभी हर चेहरे पर अपनी जीवनदायी उपस्थिति दे ही देती है। हमने नित्य प्रति जीवन में ये देखा है कि जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो हम अपने मुंह को हाथ या रूमाल से ढक लेते हैं, पर जब हम मुस्कुराते हैं तो चेहरा नहीं ढकते, क्योंकि मुस्कान बांटने के लिए है। हम किसी भी स्थिति में हों, हमारे जीवन में कितने ही अभाव हों, पर जीना तो शान से ही चाहिए, और इस तरह जीने का मूल आधार है मुस्कान। बस अपने अंदर में छुप कर बैठी इस मुस्कान को पहचानिए, इसे ढूंढिए, ये आपके अंदर ही है, आपके पास ही है। बस एक बार आप इसे पा लें तो जो आपके मनुष्य होने की संस्कृति है वो मुस्कुराती है, और जब संस्कृति मुस्कुराती है तो प्रकृति भी मुस्कुराती है, और जब मनुष्य की प्रकृति मुस्कुराती है तो जीवन को नए अर्थ मिल जाते हैं।
0: आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख श्री गिरिराज चाचा का था और वाचक थे दिनेश नामदेव। आकाशवाणी जबलपुर से अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में स्वर हैं अनुराधा पौडवाल और श्रीकांत पारगांवकर के।

सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्यकुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर थे अनुराधा पौडवाल और श्रीकांत पारगांवकर के। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कृषि समी की आज इस कार्यक्रम में वर्षा आधारित खेती के लिए सुझाव।
1: किसान भैया हरो, आज हम आपरों के लाने बारानी खेती करवे की कछु ऐसी शस्य क्रियाएं हैं जिन पत्ते वो चाहत हैं। तो वर्षा निर्भर खेती भूमि और फसलों के प्रबंध को जो कार्यक्रम है जी में कोनो भी निश्चित भूभाग में पानी की अधिकतम मात्रा को सुरक्षित रखवे की व्यवस्था होत है। वर्षा अकेले पर्याप्त न होवे से बल्कि उको वितरण भी असमान होत है। सो वर्षा जल को संचय करवो जरूरी है जिसे ज्यादातर उत्पादन अपन ले सकें। वर्षा के पानी को विशेष क्षेत्र में लेखें संग्रहित करो जा सकत है। उके लाने हम आपको बताएं कि मिट्टियों में महीन कणों कैल्शियम कार्बोनेट या क्षारीयपन के कारण कठोर तह की उपस्थिति से जल संग्रह करवे की वास्तविक गहराई कम हो जाते है। वर्षा से मिट्टी के कण गीले होखों छिद्रों के बंद कर देते हैं। हल्की वर्षा को पानी सतह से ही वाष्पीकृत हो जाते है और तीव्र वर्षा को पानी सतह से बह खोचलो जाते है। और कछु ऐसी बातें हैं जो न अपन को ध्यान में धन्य रहती है के गहरी जुताई कर वे से कठोर सतह टूट जात है जिसे जड़ों की गहराई पे जावे और उतै की संग्रहित नमी को उपयोग करवे में अपन औरों के लाने मदद मिलत है। जैविक खादों जैसे गोबर की खाद कंपोस्ट को प्रयोग करवे से मिट्टी की जो संरचना है अंतः सरण है पारगम्यता और जल संग्रह क्षमता पे अनुकूल प्रभाव पड़त है। जलोढ़ मिट्टियों में हल्की जुताई करत रहो चाहिए जो अपने लाने लाभकारी मानो जात है। काय के प्रत्येक वर्ष के बाद मिट्टी की पानी सोखवे की जो क्षमता है वह कम हो जात है। खेत में एक समान ऊंचाई की जगहों को मेड़ डाल खें मिला देवे से खेत को पानी बह नहीं पाती आए और अगली फसलों

के जो काम आजात है, कैसे के पानी मिट्टी में सूख लग जात है, वर्षा के दिनों में खेत परती छोड़ खो अगली फसल के लाने नमी संग्रहित अपन वरे कर सकत है, और ढलान वाले क्षेत्रों में जल अधिग्रहण क्षेत्र को विकास

0: जावे के लाने ज्यादा समय मिल जात है। खेत से जौन पानी बहखे जावे उखो रोक है कुआं में संचय करखो अपन कुआं के जल स्तर को बढ़ा सकत हैं और ढलान वाले खेतों में कृषि को पट्टीदार तरीका काम में ले लेवे। इके अतिरिक्त बाजरा ज्वार मक्का फसलों की कतारों के बाद मूंग उड़द मूंगफली सोयाबीन फसलों की कतारों में अपन बुआई कर सकत हैं। इन दलहनी और तिलहनी फसलों की खासियत जा है भैया के पानी के बहाव को कम करात हैं, जिससे मिट्टी को कटाव तो रुकता ही है, संगे जमीन में पानी को रिसाव सोई बढ़ जात है। खेत के निचले इलाकों में जैसे के तालाब या डबरी को निर्माण करके वर्षा के पानी को अपन इकट्ठो कर सकते हैं और उको फसल की संवेदनशील अवस्थाओं पर सिंचाई के लाने प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न तरीकों जैसे के भू समतलीकरण, वृक्षारोपण, मेड़बंदी और ढलान के विपरीत जुताई और बुवाई करके वर्षा के पानी को बहखे नहीं जान दौ जा सके अपन ऐसो काम कर सकते हैं और संगे संगे पानी से होवे वाले मिट्टी के कटाव को अपन रोक सकते हैं। खेत की ढलान के आड़े में माने के विपरीत दिशा में खेती करवे से या फिर समस्त कृषि क्रियाएं जैसे जुताई बुआई खेत की ढलान के आड़े करी जाए तो कूड़ या कूड़ में और खेत को पानी खेती में रहे थे सो ऐसी व्यर्थ बहखो नहीं जा पाती आए। इस तरह से ज्यादा पानी भूमि के अंदर चलो जात है जो कि वर्षा समाप्त होवे के बाद सोई फसल के लाने लंबे समय तक अपने काम में आउते रहते है।
1: कृषि सामयिकी में आप सुन रहे थे बारानी खेती के लिए सुझाव। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। कार्यक्रम विवरण। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। 8:30 पर आप आनंद उठा सकते हैं फिल्म संगीत का। 9:00 लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रसधार में सुनिएगा अशोक झारिया के गाए बुंदेली लोक गीत। 9:15 पर गांधी चर्चा हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे और 9:30 से एक बार फिर आप आनंद उठा सकते हैं फिल्म संगीत का। 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी। 10:10 पर समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

10:20 पर होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा और 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे, जो कि आप सुनेंगे सभा के समापन यानी दिन में 3 बजे तक। दूसरी सभा की शुरुआत में 5:02 पर कार्यक्रम युववाणी हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 5:30 से सुनिए फिल्म संगीत। 6:00 हमारे केंद्र से आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

शाम 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में राम सेवक श्रीवास्तव के गाए बुंदेली लोकगीत सुने जा सकते हैं। शाम 6:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा अन्नपूर्णा शर्मा के गाए गीत और गजल। शाम 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लोकगीतों के अलावा आप सुनेंगे

करेंगे। पशु नस्ल सुधार का महत्व और शासन की नस्ल सुधार योजनाएं, इस विषय पर डॉक्टर वैशाली खरे द्वारा दी गई जानकारी।

रात 8 बजे सुर्खियों में ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा। 8:15 से सुनिएगा फिल्म संगीत। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके मैसेज आपके गीत, जिसकी विस्तृत जानकारी हम देंगे आज के गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में।

रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित अजय पोहनकर का गायन, और रात 10:30 पर होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विष्टक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितम् अस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्री गोयल तत्रत्य भैषज उद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयु इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतत्पश्चात् पुरुष एकलवर्गे किरण जॉर्ज, सनी दयानन्दः, तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has said that when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi yesterday, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. The centre has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Centre under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic, deep fake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovering systems, and unauthorized access to financial and digital services. The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms, or phone calls. President Draupadi Murmu will be on a 2-day visit to Uttarakhand beginning today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed concern that ongoing conflicts are imposing costs and triggering changes far beyond the regions. The minister said this while participating in a discussion with his Finnish counterpart Elina Voltunen and Assistant Foreign Minister of UAE Lana Nusebe on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland. Dr. Jaishankar also stressed the need for the international community to continue efforts to mitigate their consequences and create conditions for diplomacy. The Enforcement Directorate ED has arrested Naresh Kumar, the then superintendent in the Office of Director Development and Panchayat Haryana, in connection with the ongoing investigation in IDFC Bank fraud case. He was arrested under the provisions of Prevention of Money Laundering Act, PMLA, 2002. Investigation in the case has revealed embezzlement of public funds amounting to 645 crore rupees from the bank accounts of Haryana government, Chandigarh administration, and two private schools maintained with IDFC First Bank. US President Donald Trump said last night that he has called off new military strikes on Iran hours after threatening to escalate the war by seizing control of the country's oil industry. In a social media post, Trump said that he made the move based on the fact that discussions with Iran have been brought to the highest level of Iranian leadership and approved. The announcement came after 2 days of back and forth attacks between the US and Iran had pushed the Middle East closer to the resumption of a full-scale war. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston in Birmingham. The month-long tournament will be hosted across England and Wales, with the final set to take place on the 5th of July at the iconic Lord's Cricket Ground. India will start their campaign against arch-rivals Pakistan on Sunday. Harmanpreet Kaur-led Indian side will be looking to create history as they aim for their first Women's T20 World Cup title. And that is the end of this news bulletin.
4: भोपाल है। प्रादेशिक समाचार बस कुछ ही पलों में होंगे।
5: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और 10वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप आज से शुरू, पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। वे इस दौरान देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी एनडीए के 198वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से लखपति दीदियों की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने, युवाओं के कौशल विकास और जल संरक्षण पर जोर देने का आह्वान किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों की साझी भागीदारी को अनिवार्य बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल रात इंदौर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए विदेशी प्रतिनिधियों के सम्मान में भव्य रात्रिभोज का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रदेश की लोक कला, आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विविधता पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
2: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर अलग अलग सभी देशों के साथ संबंध बनाते हुए एक दूसरे की अनुकूलता का लाभ ले, ऐसे समय में कृषि सेक्टर हमारा, खासकर एग्रीकल्चर ईयर हमने डिक्लेयर किया। कृषि मंत्रियों का और कृषि से जुड़े हुए विद्वानों का एक बड़ा सम्मेलन है। कृषि एक तरह से व्यक्ति को जोड़ने का सबसे उत्कृष्ट माध्यम है। मैं सभी मंत्रियों का, राजनयिकों का, राजदूतों का सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को सुबह 6:15 पर आयोजित होने वाले विशेष ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की है। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत आयोजित इस 20 मिनट के सत्र में कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीयन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने केंद्र की तय समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा कर लिया है और अब प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना, पीएम मित्र पार्क, कौशल विकास और नदी जोड़ो परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा की आपत्ति स्वीकार करते हुए 9 जून को उनका नामांकन रद्द कर दिया था। भाजपा का आरोप था कि नटराजन ने अपने खिलाफ दर्ज एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी थी। प्रदेश से राज्यसभा के लिए भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। कल रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंपे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तथा सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी की 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला के आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में कल भोपाल में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में विधेयक के प्रमुख प्रावधानों, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, गुणवत्ता अनुसंधान और नियामकीय सुधारों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मंत्री श्री परमार ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। आज 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। टीकमगढ़ जिले के अस्तोन गांव में कल 3 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिद्ध सागर तालाब में नहाने के दौरान तीनों बच्चे गहरे पानी में जा फंसे। मृतकों में 12 वर्षीय प्रिंस अहिरवार और 13-13 वर्षीय दीपेश व राज अहिरवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए तीनों परिवारों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश के युवा अजय अहिरवार ने इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन में ब्रिक लेइंग स्किल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उनका चयन सितंबर 2026 में शंघाई में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन और जून में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ग्लोबल स्किल चैलेंज के लिए भी किया गया है। राज्य कौशल विकास बोर्ड ने उनकी तैयारी के लिए विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा 2026 का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे या अपने अंक सुधारना चाहते थे। मंगोलिया के 10 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवास के बाद भगवान बुद्ध के परम शिष्यों सारिपुत्र और महामौत गलायन के पवित्र अवशेष कल भोपाल के राजा भोज विमानतल पहुंचे। मंगोलिया की राजधानी उलान बातर के गंदन मठ में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इन अवशेषों के दर्शन किए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 3 से 4 दिन की देरी से आएगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मानसून 17-18 जून को दस्तक देगा और अगले 10 से 15 दिन में पूरे प्रदेश को कवर करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि का अनुमान है, जबकि भोपाल सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में कल NRLM आजीविका भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मास्टर वॉलंटियर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आगरमालवा में 40 दिवसीय योग अभियान चल रहा है, जिसके तहत योग के महत्व, स्वस्थ जीवन शैली और नियमित योगाभ्यास के लाभों की जानकारी दी जा रही है। खंडवा में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए 6, 7 और 8 जुलाई को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। ITI इंदौर में एक निजी कंपनी ने तकनीशियन के 50 पदों के लिए युवाओं का चयन किया और केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद दुर्गादास उइके ने बैतूल में 18 जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम आध्यात्मिक जागृति से जनजाति समाज का सशक्तिकरण की तैयारियों का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर, देहरादून में NDA की पासिंग आउट परेड का करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और 10वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप आज से शुरू। पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 7:21 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार करें चमन सालवार का नमस्कार। श्रोताओं, हर मौसम की अपनी कुछ खूबियां होती हैं और अपनी कुछ चुनौतियां भी होती हैं, और हर मौसम कुछ ना कुछ संदेश भी देकर जाता है। लेकिन बरसात का एक ऐसा मौसम होता है जो चारों तरफ हरियाली और खुशहाली बिखेर देता है। पशु पक्षी सबसे ज़्यादा आनंदित इसी मौसम में रहते हैं। ये अलग बात है कि हम इंसानों के लिए ये मौसम बहुत सारी चुनौतियाँ लेकर आता है। सेहत संबंधी बहुत सारी समस्याएं सर उठाने लगती हैं, आशंकाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन ये मौसम जीवन में बहुत कुछ देकर जाता है। पानी की बूंदें सिर्फ अकेले नहीं आती हैं, समृद्धि और विकास की बहुत सारी इबारत लेकर जाती हैं।

और अगर पशु पक्षियों के जीवन की बात की जाए तो कितना चुनौतीपूर्ण उनका जीवन होता है। गर्मी के मौसम में उनकी मुश्किलें समझी जा सकती हैं, खासकर जंगलों में जो रहते हैं। जंगलों में सबसे बड़ी चुनौती पीने के पानी की होती है, और होता यह है कि जितने हिंसक पशु होते हैं वो पानी के जो स्रोत होते हैं उसी के आसपास अपना डेरा जमा लेते हैं। ऐसे में शाकाहारी पशु क्या करें। और पानी के भीतर भी खतरा मगरमच्छ जैसे प्राणियों के रूप में मौजूद रहता है। ये बात जहन में इसलिए आ रही है कि हम इंसानों का जीवन वास्तव में जीव जगत में सबसे ज़्यादा सुविधाजनक जीवन हमें मिला है। ऐसे जीवन को अगर कुछ लोग बोझ समझने लग रहे हैं या बोझ समझ लेते हैं तो ये उनकी नासमझी है। बड़े भाग से मानुष का तन मिलता है, और इसलिए इस तन का, इस जीवन का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें समस्याएं किस जीवन में नहीं होती। लेकिन हार मान लेने से हम वास्तव में हार जाते हैं, और अगर हार ना मानी जाए तो मुश्किलें उतनी मुश्किल खड़ी बिल्कुल नहीं करती हैं, और ये बात मौसमों से भी सीखी जा सकती है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आज जिस सुविधाभोगी समय में हम रह रहे हैं या सुविधाभोगी देश में हम रह रहे हैं, जहां पर उपलब्धियां बेशुमार हैं, कई साल पहले या कुछ साल पहले यह तस्वीर बिल्कुल ऐसी नहीं थी। आज की जो युवा पीढ़ी है, वो बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी बातों से, उन्नति के बहुत सारे रास्ते जो हैं, बहुत सारी उपलब्धियों से आज अनजान हैं। अगर हम प्रसारण की तकनीक की ही बात कर लें, तो आज जिस तरह से सीधे कंप्यूटर के माध्यम से गाने आप तक पहुँचते हैं, सूचनाएँ आप तक पहुँचती हैं, वार्ताएँ आप तक पहुँचती हैं, चर्चाएँ आप तक पहुँचती हैं, पहले ऐसा नहीं था। मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होता था। और आज की पीढ़ी ने कभी जो छोटे वाले कैसेट प्लेयर रिकॉर्डर होते थे, कभी पेन या पेंसिल फंसा के रिवर्स फॉरवर्ड नहीं किए होंगे। मध्यवाई के लोग बखूबी जानते हैं उस सुख को। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बीते समय की हैं और अब बहुत सहज सुलभ हो गई हैं। एक समय था जब गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा करती थीं और गैस सिलेंडर पा जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कभी STD PCU के बूथ हुआ करते थे और उसमें जो चक्री घूमती थी, बड़ी अहम बातें इसलिए छूट जाती थी क्योंकि जेब इजाज़त नहीं दिया करती थी। आज कितना सहज और सुलभ हो गया है लोगों से बात करना, वीडियो कॉल पर हम बात कर लेते हैं। मतलब हमारा देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, दुनिया के विकसित देशों के साथ अब कदम से कदम मिलाने को तैयार है हमारा देश। और इस उपलब्धि में पिछले जितने भी कर्णधार रहे हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हों या समाज सेवक हों, सबकी अहम भूमिका रही है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ

0: कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, सुख दुख के दो किनारों के बीच बहने वाली नदी का नाम है जिंदगी, जिसका प्रवाह कभी रुकता नहीं है। जिंदगी के सफर में, इस कारवां में लोग आते हैं, अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और नेपथ्य में चले जाते हैं। कुछ गुमनाम रह जाते हैं और कुछ थोड़ी सी भूमिका में भी इतनी जान डाल देते हैं कि वो हम सबकी स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं। जीवन को लेकर ये कहा जाता है कि जहाँ शहनाइयाँ बजती हैं वहाँ मातम भी होते हैं। दो सूचनाएँ इसी की बहन की, पहली जिसमें संगीत है, ये सूचना है आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम की। ये कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रति शुक्रवार को रात 9:30 से रात 10 तक आकाशवाणी जबलपुर से। इस बार की 5 फिल्में जिसके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है आज अपराह्न 4 तक। गीत और फिल्म के नाम इस प्रकार हैं, फिल्म गीत का गाना जिसके सपने हमें रोज आते रहे, आवाज़ लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। ईश्वर फिल्म का गाना आगे सुख तो पीछे दुख है, कविता कृष्णमूर्ति और नितिन मुकेश ने इस गाने को गाया। थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़। कुली नंबर 1 का गाना जब दिल ना लगे दिलदार, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़। सपने फिल्म का गीत आवारा भंवरे, हेमा सरदेसाई और मलेशिया वासुदेवन ने इस गाने को गाया। हमारा मोबाइल नंबर है 9425149342, 9425149342। ये संदेश हमें शाम 4 तक मिल जाना चाहिए। एक बार फिर गाने दोहरा रहे हैं, जिसके सपने हमें रोज़ आते रहे, फिल्म गीत का ये गाना, आगे सुख तो पीछे दुख है, ईश्वर फिल्म का गाना, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का नगमा, जब दिल ना लगे दिलदार कुली नंबर 1 का गाना और आवारा भवरे सपने फिल्म का गाना। मोबाइल नंबर 9425149342, 9425149342। और अब एक सूचना जो संजीदा है। जीआरपी थाना जबलपुर में पंजीबद्ध मर्ग क्रमांक 24/26 के मुताबिक अज्ञात मृतक रमाशंकर, पिता मधुरम, उम्र 52 साल, निवासी अज्ञात का दिनांक 9 जून 2026 को शासकीय अस्पताल विक्टोरिया में अज्ञात बीमारी होने से इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। हुलिया की बात करें तो इनके पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हैं, सिर में बाल कम, बाल रंगे हुए, काले, दाढ़ी और मूछें हल्की बढ़ी हुई, रंग सांवला, चेहरा सामान्य, बदन इकहरा, कद करीबन 5'7", मृतक के बदन पर सफ़ेद कलर का शर्ट और नीले कलर का लोवर और सफ़ेद सेंडो बनियान और कत्थे कलर का अंडरवियर है। मृतक के वारसानों की तलाश पतासाजी की गई परंतु कोई पता नहीं चला। इस हुलिया के व्यक्ति के बारे में अगर कोई भी आपके पास सूचना या जानकारी हो तो जीआरपी थाना जबलपुर में संपर्क करें। दोस्तों, सम्मानजनक तरीके से अंतिम विदाई हर जीवन का अधिकार होता है और इस जीवन को भी ये विदाई ज़रूर मिलना चाहिए।

दोस्तों, हमारी संस्कृति में जीवन के चार उद्देश्य माने गए हैं, जिसमें संन्यास सबसे आखिरी है। और ये बहुत बड़ी हकीकत है कि एक समय के बाद चीज़ें छूटती हैं, उपलब्धियां छूटती हैं। हर वो चीज़ जो ऊपर आती है, ऊपर फेंकी जाती है, अपनी गति से एक दिन नीचे भी आती है। ये जीवन की बहुत कड़वी हकीकत है। और एक जो संन्यास का भाव कहते हैं व्यक्ति के मन में आना चाहिए, उसे हम सारे लोग अनुभूत करते हैं कब, जब हम किसी को अंतिम विदाई देने जाते हैं। उस प्रक्रिया के दौरान हमारे मन में सिर्फ जीवन की निस्सारता, क्षणभंगुरता की बातें आती हैं। और यूं तो हम आईना रोज़ देखते हैं, लोग हमें चाहे जिस रूप में जानते हों, लेकिन हम क्या हैं ये हमसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। अपनी वो खामियां भी हम पहचानते हैं जिससे दुनिया भी वाकिफ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जीवन को ऐसे जिया जाना चाहिए ताकि हमारे बाद भी लोग एक सम्मान के साथ हमें याद करें। और जीवन में हर तरह की चीज़ें आती हैं, हर तरह की परिस्थितियों से हमारा सामना होता है, और कई बार बहुत से ऐसे काम भी

करते हैं जिससे दूसरों को चोट पहुंचती है, भले ही हमारा उद्देश्य नहीं होता है। और समय रहते अगर इस बात का एहसास हमें हो गया है तो उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लेने में भी कोई बुराई या कोई कमज़ोरी की बात नहीं होती है। झुकने की जो कला है वो बहादुरी की ही शान होती है। और ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी उपलब्धियाँ, छोटे छोटे सुख, छोटे छोटे दुख, यही तो जीवन की खासियत है।

बिल्कुल दोस्तों, छांव धूप, खुशी गम, आशा निराशा, धूप छांव, ये सब जीवन के अंग हैं, जीवन का हिस्सा हैं। और जीवन लगातार चलने की चीज़ है। सफ़र में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, लेकिन रुकना जीवन की निशानी नहीं है। आखिर में राम प्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियाँ, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी आरजू रहे, जब

तक है तन में जान, रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी आरजू रहे। इजाजत दीजिए अपने दोस्त चमन सालवार को। नमस्कार।

मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: आज सिर्फ एक MOU से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा

0: प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
2: We signed this year a free trade agreement with Europe.
3: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
5: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
4: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार PM ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में PM ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्य राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पश्चिम पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है

ए बिच्छू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ।

0: क्या हुआ, गाओ ना।
1: नहीं, आज मूड नहीं है।
0: मूड नहीं? अरे रियाज नहीं करना है क्या?
1: गाना मेरे बस की बात नहीं है।
0: तो फिर यही गाओ।
1: क्या?
0: गाना मेरे बस की बात नहीं। अरे हंसो मत, गाओ।

साधना सरगम और शंकर महादेवन की आवाज में अस्तित्व फिल्म का यह नगमा भी आपने सुना। गीत श्रीरंग गोडबोले का था और संगीत सुखविंदर सिंह और राहुल रानाडे का।

शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा यह नगमा आपने सुना। आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज थी और फिल्म का नाम 10। अगला गाना आपको सुनवाएं उससे पहले एक सूचना आपको दे दें दोस्तों, आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम प्रति शुक्रवार को रात 9:30 से रात 10 तक आकाशवाणी जबलपुर से प्रसारित किया जाता है। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है वो भी आज शाम 4 तक इस प्रकार हैं।

4942। ये संदेश हमें शाम 4 बजे तक मिल जाना चाहिए। एक बार फिर हम गाने दोहरा रहे हैं, जिसके सपने हमें रोज़ आते रहे। फिल्म गीत का ये गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ। आगे सुख तो पीछे दुख है, नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये गाना फिल्म ईश्वर से। आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया ये गीत फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का है। और जब दिल न लगे दिलदार, अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया ये गाना कुली नंबर 1 फिल्म से। और आवारा भवरे जो हौले हौले गाएं, फिल्म सपने का ये गाना हेमा सरदेसाई और मलेशिया वासुदेवन का गाया हुआ। मोबाइल नंबर 9425149342 9425149342। संदेश हमें अपराह्न 4 बजे तक मिल जाना चाहिए।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ में संगीत फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है।

8:58 होने को है और इस वक्त आप सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस। हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वे देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 198 नियमित पाठ्यक्रम और 141 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से लखपति दीदियों की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने, युवाओं के कौशल विकास और जल संरक्षण पर जोर देने का आह्वान किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने केंद्र की तय समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा कर लिया है। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना, पीएम मित्र पार्क, कौशल विकास और नदी जोड़ो परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्यसभा के लिए भाजपा के तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मानसून 17-18 जून को दस्तक देगा और 15 दिन में पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। विभाग ने आज भोपाल सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश की चेतावनी दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 9 बजे हैं और इस समय आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए अशोक झारिया के गाए बुंदेली लोकगीत।

लोकरस धार कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अशोक झारिया के गाए बुंदेली लोकगीत। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 9:15 होने को है। गांधी चर्चा कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

सत्याग्रह की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें हैं। सत्याग्रही के मन में विरोधी के लिए घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए। सत्याग्रह का मुद्दा सच्चा और महत्वपूर्ण होना चाहिए। सत्याग्रही को अपने ध्येय की पूर्ति होने तक पीड़ा भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस युग में प्रत्येक स्त्री पुरुष को आत्मरक्षा की कला सीखनी चाहिए। पश्चिम में इसके लिए हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक वयस्क पुरुष को एक निश्चित अवधि के लिए अनिवार्यतः सैन्य सेवा करनी पड़ती है। सत्याग्रह का प्रशिक्षण सबके लिए है। इसमें आयु अथवा स्त्री पुरुष की कोई बंदिश नहीं है। इस प्रशिक्षण का अधिक महत्वपूर्ण पक्ष मानसिक है, शारीरिक नहीं। मानसिक प्रशिक्षण में कोई बाध्यता नहीं हो सकती। ये जरूर है कि आसपास का वातावरण मन पर असर डालता है, लेकिन इससे बाध्यता का औचित्य सिद्ध नहीं हो सकता। सशस्त्र प्रतिरोध की अपेक्षा सत्याग्रह सदैव श्रेष्ठ है। इसे तर्क से नहीं बल्कि प्रदर्शन द्वारा ही ज्यादा अच्छी तरह सिद्ध किया जा सकता है। सत्याग्रह का शस्त्र बलशाली का आभूषण है, यह दुर्बल का आभूषण कभी नहीं हो सकता। दुर्बल से यहां आशय मन और प्राण की दुर्बलता से है, शरीर की दुर्बलता से नहीं। ये सीमा एक गुण है जिसकी कद्र की जानी चाहिए, कोई अवगुण नहीं जिसकी निंदा की जाए। एक और भी सीमा है जिसे समझना जरूरी है, और वो ये कि सत्याग्रह का प्रयोग गलत उद्देश्य के लिए कभी नहीं किया जा सकता। सत्याग्रहियों के जत्थे प्रत्येक गांव में और शहरों में इमारतों के प्रत्येक ब्लॉक के लिए संगठित किए जा सकते हैं। हर जत्थे के सदस्य ऐसे लोग हों जिन्हें संगठनकर्ता अच्छी तरह जानते हों। इस मायने में सत्याग्रह और सशस्त्र सेना में फर्क है। सेना में भर्ती के लिए राज्य प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह करती है, लेकिन सत्याग्रह के जत्थे में सिर्फ वे ही लोग भर्ती किए जा सकते हैं जिनका अहिंसा और सत्य में विश्वास हो। इसलिए जत्थे में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों के बारे में संगठनकर्ताओं को गहरी जानकारी होनी चाहिए। जब मैंने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा की शुरुआत की थी तो इसमें आपराधिक अवज्ञा के लिए कोई स्थान नहीं था। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि सत्य का प्रचार हिंसा के द्वारा कभी नहीं किया जा सकता। जिन्हें अपने उद्देश्य की न्यायोचितता में विश्वास है उनमें असीम धैर्य होना चाहिए, और सविनय अवज्ञा करने के अधिकारी वही हैं जिनके हाथों आपराधिक अवज्ञा या हिंसा कभी हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय में संयत और क्रोधोन्मत्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई व्यक्ति सविनय अवज्ञा और आपराधिक अवज्ञा एक साथ नहीं कर सकता।

और जिस प्रकार अपने मनोवेगों पर विजय पाने के उपरांत ही व्यक्ति आत्मसंयम के गुण का विकास कर सकता है, उसी प्रकार देश के नियमों के पूर्ण और स्वैच्छिक पालन का अभ्यस्त हो जाने के बाद ही व्यक्ति में सविनय अवज्ञा की क्षमता उत्पन्न होती है। गांधी चर्चा में ये था आज का प्रसंग और अब प्रस्तुत है भजन।

गांधी चर्चा अभी हम आकाशवाणी भोपाल से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। श्रोताओं आप सुनिए फिल्म संगीत। पहला गाना किशोर कुमार की आवाज़ में है, गीत आनंद बख्शी का, संगीत आर डी बर्मन का। फिल्म का नाम है जवानी दीवानी।

किशोर कुमार की आवाज़ में वारंट फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे और आर डी परमन का संगीत। अगले गाने से पहले सूचना आपको दे दें, आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रति शुक्रवार को रात 9:30 से रात 10 तक आकाशवाणी जबलपुर पर। इस बार की 5 फिल्में जिसके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है इस प्रकार हैं, और ये संदेश हमें अपराह्न 4 तक मिल जाना चाहिए। गीत के बोल हैं जिसके सपने हमें रोज, फिल्म का नाम गीत, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया ये नगमा, ईश्वर फिल्म का गीत आगे सुख तो पीछे दुख है, कविता कृष्णमूर्ति और नितिन मुकेश ने इस गाने को गाया है, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया गाना फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से, कुली नंबर 1 का गाना जब दिल ना लगे दिलदार अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में, सपने फिल्म का गीत आवारा भवरे, हेमा सरदेसाई और मलेशिया वासुदेवन ने इस गाने को गाया। मोबाइल नंबर है 9425149342 9425149342। आपके संदेश हमें अपराह्न 4 तक मिल जाना चाहिए। और अब कार्यक्रम का अगला गीत, मुकेश और साथियों ने इस गाने को आवाज़ दी है, वर्मा मलिक के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम है बेईमान।

0: बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी। हा? इनका अंत निकट है।
0: तथास्तु।

0: बोल आपने सुने। किशोर कुमार की आवाज़ थी, फिल्म का नाम आराधना। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। 10 बजे हैं, वक्त हो रहा है जिले की चिट्ठी का।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख दिलीप कुमार शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पन्ना जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक और प्राकृतिक स्थल बृहस्पति कुंड में बने नए ग्लास ब्रिज का क्षेत्रीय सांसद वीडी शर्मा ने निरीक्षण किया। भगवान श्रीराम के वनगमन पथ और देवगुरु बृहस्पति की तपोस्थली के रूप में पूजनीय इस स्थल पर बना यह ग्लास ब्रिज पर्यटकों को प्रकृति का अनूठा नजारा दिखाएगा। सांसद श्री शर्मा ने कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पन्ना को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना के तहत फुलवारी से देवेंद्र नगर के बीच करीब 7 किलोमीटर लंबे नए रेल खंड का रेल संरक्षा आयुक्त ने विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान नए ट्रैक पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड का ट्रायल भी किया गया। हालांकि खजुराहो पन्ना खंड में रूट डिजाइन में बदलाव के चलते 7 सुरंगें और 10 पुल बनाए जाएंगे, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ने की संभावना है। पन्ना जिले में विश्व पर्यावरण दिवस पर बीते दिनों एक पेड़ माँ के नाम 2.0 महाअभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण किया गया। पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने अटल पार्क में और पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने बनौली में पौधे लगाए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी की उपस्थिति में 150 फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। पन्ना जिले की शाहनगर ग्राम पंचायत प्रदेश की नंबर 1 स्वावलंबी पंचायत बन गई है। ये पंचायत जल कर, स्वच्छता कर, संपत्ति कर और बाजार बैठकी कर से हर महीने करीब 3 लाख रुपए यानी सालाना 36 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर रही है। पंचायत ने मुख्य बाजार में डिवाइडर युक्त डामर सड़क और सुंदर लाइटिंग भी कराई है। तमोली ग्राम वन समिति के अध्यक्ष अजय चौरसिया की पक्षी संरक्षण की अनूठी पहल पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गई है। उन्होंने सूखी लौकी और प्लाईवुड से प्राकृतिक पक्षी घर तैयार किए हैं, जिसमें आज सैकड़ों पक्षी बसेरा कर रहे हैं। उनकी इस कोशिश को पर्यावरण प्रेमियों से खूब सराहना मिल रही है। शाहनगर तहसील के सामने कांग्रेस पार्टी ने किसानों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बीते दिनों किया। तेंदुघाट बांध सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के 4 गांवों के किसानों को 8 साल से मुआवजा न मिलने पर यह प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार ने बताया कि भू अर्जन की फाइल जिला मुख्यालय भेज दी गई है और जल्द ही मुआवजा वितरित किया जाएगा। अजयगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत बिहरपुरवा में मनरेगा कुआं निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के मामले में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरपंच और ठेकेदार सहित 3 जिम्मेदारों पर FIR दर्ज की है। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद वीडी शर्मा और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधवाया। भाजपा नेता संजय नागायच को मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कारपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुनौर विधायक राजेश वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अंकुर त्रिवेदी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर उषा परमार ने बीते दिनों पवई क्षेत्र का दौरा कर सब जेल, नवनिर्मित सिविल अस्पताल, कस्तूरबा कन्या छात्रावास और जनजाति छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार तलैया ने शाहनगर में सभी प्राचार्यों की आपात समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मानसून से पहले स्कूल भवनों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था और विद्यार्थियों की अपार ID बनाने के काम को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र की प्री खरीफ वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक बीते दिनों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलगुरु प्रोफेसर प्रमोद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में किसानों को खरीफ मौसम में समन्वित खेती, धान की सीधी बुआई, जैव उर्वरकों के उपयोग और मोटे अनाज की खेती अपनाने की सलाह दी गई। विशेषज्ञों ने परंपरागत बीजों के संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया। जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर और सोनोग्राफी सहित अन्य जाँचें की गयी। जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य समय पर पूरा न करने पर कलेक्टर उषा परमार ने 42 प्रगणकों और सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिले के शासकीय कार्यालयों में AI टूल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज कलेक्ट्रेट स्थित ई दक्ष केंद्र में 45 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न विभागों के इन कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी जाएगी। पन्ना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख था दिलीप कुमार शर्मा का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था।
0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए।

नमन मातृभूमि को, जिसने हमें भारतीय होने के सम्मान से नवाजा और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गौरव से विभूषित हमारा देश मानवीय मूल्यों और सर्वधर्म समभाव की मजबूत परंपराओं का वाहक है। हम अपनी मातृभूमि को माँ की संज्ञा देते हैं, जिसके गौरवगान का नाम है वंदे मातरम, जिसका अर्थ है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:10 होने को है। समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन के स्विट्जरलैंड दौरे पर रवाना होंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 16 लोगों की मौत, 37 घायल। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री अल्कांस और रक्षा सचिव जॉन हीली ने सैन्य निधि विवाद के चलते इस्तीफा दिया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने का समझौता लगभग पूरा हो चुका है। उन्हें आशा है कि सप्ताह के अंत में यूरोप में हस्ताक्षर किए जाएंगे। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार न रखने और न ही खरीदने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता सुनिश्चित करेगा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर पाए, जिसे उन्होंने तेहरान के खिलाफ अमरीकी प्रशासन के दबाव अभियान का मुख्य उद्देश्य बताया। अमरीका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। इससे क्षेत्र में हफ्तों से चले आ रहे सैन्य तनाव और समुद्री व्यवधानों के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव कम होने की संभावना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहाँ वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं।
1: We signed this year a free trade agreement with Europe.
2: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग, खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: इससे पहले डॉ. जयशंकर अपने दो देशों के दौरे के अंतिम चरण में कुल तारंता वार्ता में भाग लेने के लिए बुल्गारिया से फिनलैंड पहुंचे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब द्वारा आयोजित इस वार्षिक वार्ता में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ नेता और नीति निर्माता एक साथ आए थे। विदेश मंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने बदलती भू राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया और तेजी से अनिश्चित होते वैश्विक वातावरण में कूटनीति के महत्व पर बल दिया। उनकी मुलाकात फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता के दौरान हुई। विदेश मंत्री ने फिलीपींस की विदेश मंत्री थेरेपी पी लजारो और फिलीपींस के लोगों को देश के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत फिलीपींस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री मिश्री ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी और भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मुलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे।

स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री अल कांस ने रक्षा सचिव जॉन हीली के इस्तीफे के बाद स्टार्मर सरकार से इस्तीफा दे दिया है। हीली का इस्तीफा प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ सैन्य निधि को लेकर हुए विवाद के बाद हुआ है। श्री अल कांस ने कल इस्तीफा देते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि सरकार की रक्षा निवेश योजना न तो पर्याप्त रूप से परिवर्तनकारी है और न ही इसके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध है। ये इस्तीफा हीली के उस तीखे पत्र के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर द्वारा प्रस्तावित सैन्य खर्च देश की रक्षा के लिए आवश्यक राशि से बहुत कम है। श्री हीली के स्थान पर कैबिनेट में सुरक्षा मंत्री और पूर्व ब्रिटिश सेना अधिकारी डैन जार्विस को नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJ के ईदगाह मैदान में हजारों निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 16 लोग मारे गए और 37 अन्य घायल हो गए। हालांकि किफायती आटा, चावल, बिजली और बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कल शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने AK-47 राइफलों से भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिससे हालात खराब हो गए। रावलकोट में करीब 60-70 हजार लोग पाकिस्तान के निरंतर कब्जे और क्षेत्र में उसकी नीतियों के खिलाफ नारे लगाने के लिए इकट्ठे हुए थे। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने POK में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 30 मृतकों और 200 घायलों के लिए न्याय की मांग की थी। खाई गाला गांव में निवासियों ने बाजार बंद कर दिए और हिंसा के खिलाफ मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन के बाद सड़कें और खेत खलिहान खून से लथपथ हैं और शोक संतप्त परिवार अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं। अमेरिका ने क्यूबा की सरकारी तेल और गैस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जिससे क्यूबा पर दबाव बढ़ गया है। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार पर आरोप लगाया है कि वो ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल दमन जारी रखने और अपने नेतृत्व को समृद्ध करने के लिए कर रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश के अंतर्गत क्यूबा की सरकारी ऊर्जा कंपनी यूनियन क्यूबा पेट्रोलियम को प्रतिबंधित घोषित करने की घोषणा की है। श्री रूबियो ने कहा कि हर संसाधन की तरह ऊर्जा को भी क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार ने लंबे समय से दमन और स्वार्थपूर्ण सत्ता के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। अमरीकी विदेश विभाग ने आरोप लगाया कि दशकों से बुनियादी ढांचे में कम निवेश के कारण आम क्यूबा वासियों को ईंधन की कमी और बार बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका 2026 के वैश्विक शांति सूचकांक में 14 पायदान पर पहुंच गया है जिससे उसे दक्षिण एशिया में दूसरा स्थान मिल गया है और यह इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। यह रैंकिंग लगभग 3 दशक के गृह युद्ध के बाद देश के निरंतर सुधार को दर्शाती है जो 2009 में समाप्त हुआ था और राजनीतिक स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करने के प्रयासों का परिणाम है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन के स्विट्जरलैंड दौरे पर रवाना होंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 16 लोगों की मौत और 37 अन्य घायल। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही विश्व

0: दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:20 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सारंगा।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को चमन सालवार का नमस्कार। आसमानी फुहार का भी इंतजार है, लेकिन ये जो कार्यक्रम है इसमें हमेशा सुरों की फुहार होती रहती है और हम सब भीगने को आतुर रहते हैं। पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप सब हैं शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी, गौरव सैनी, राधिका सैनी, दीपिका सैनी, गंगा प्रसाद सैनी। लक्कड़ बाजार खंडवा से भवानी सिंह बैंस, रोहन रिया, रणवीर सिंह, संजय पगारे। प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले, मंदारा संदीप, पिंटू कुमार, यथार्थ कुमार और जयश्री खंडाले। कुंदानगर खरगोन से ध्रुवा सोनवणे, सुनीता सोनवणे, खुशी, प्रियांश, आशीष, कृष्णा और शुभम सोनवणे। ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। चाटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। जीसीएफ एस्टेट परेल लाइन से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, शानू, अभय, मन्नत, पुष्पा, सुदेशना राजपूत। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयसा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, मुस्ताबा खान, राउफ और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। और पुरानी टोली जशपुर नगर छत्तीसगढ़ से परमानंद नागदेव, मालती नागदेव, सोनाली, मयंक, अनिमेश और मास्टर अंसल नागदेव। सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया ये नगमा।

कल्पा जिला सतना से लाल मोहम्मद, चांद मोहम्मद, सितारा खान, मौसमी खान, आशिक की अंजुम और मोहम्मद दिलशान पठान। करकबेल रेलवे कॉलोनी से राम स्वरूप सराठे, सूरज सराठे, पवन, सपना, अनिरुद्ध, अनन्या और लता सराठे। नर्मदापुरम पोसाद पिपरिया से सीताराम कहार, विश्वनाथ कहार, दिव्या सोमनाथ, पूनम और अनंत कहार। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। ये चिट्ठी ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर की है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी की। भूट चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका, आकृति और वंशराज सिंह। कस्बा गन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल देवांगन। मुरादाबाद दूल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक और बलबीर सिंह। शहडोल से सोनू खान, मोनू खान, ब्रजेंद्र प्रजापति, कविता प्रजापति, बिरसिंहपुर पाली, उमरिया से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, विकास, ओम प्रकाश, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा। मोहल्ला हलवाइन शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदा रानी और हिना कौसर। आप सबको सुना रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे आवाज़ दी है किशोर।

बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी राही, अंकिता सिद्धार्थ और सृष्टि राही, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, कनेरा

मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गिति निहारका और वंश बत्ता। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत, अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमड़े, वैष्णवी ढोमड़े, चंचल ढोमड़े, अर्जुन गवनेकर और धीरज सबशेरे। आदर्शनगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरव और शाइना शर्मा। ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। आप सबको सुना रहे हैं उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में सावन कुमार का लिखा ये नगमा, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। फिल्म का नाम है लैला।

जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया। क्रिश्चियन कॉलोनी सागर से डैनी मार्टिन, अर्चना मार्टिन, अश्मिका, अंशिका और विमला मार्टिन। वैष्णव कॉलोनी सनाबत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलबिंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। कावर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्लाह फकीर, डब्लूल्लाह फकीर और परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भापिया और सुषमा सारथी। बेलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष ठाकुर, अवधेश दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, शेख मुनीर मंसूरी, राम कुमार लोधी और गोविंद यादव। आप सबके पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत कुणाल गांजावाला की आवाज़ में, फिल्म का नाम है क्योंकि।

नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया, शरण, ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी रोली, लकी, श्वेता और परु, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा, गड़िया मौजी उस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी, बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि गद्रे, राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे, बजरंग रेडियो श्रोता संघ बंडा बेली सागर से लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी, अनरथ, लल्ले, लल्लू हल्ले, ऋषि रैकवार और बंडा, बोरखेड़ा पित्रमल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूड़त, ग्राम मुंडेला से जौनपुर का ये गांव है, चंदा, आकाश कुमार, कन्हैयालाल और सीता रीता देवी, परिमहल काजगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान, जमीर खान, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार, सविता बेबी स्वाति और माखीजा परिवार के लोग, सर्वानिया महाराज नीमच से गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा, मधुसूदन, यशस्वी और हंसवी पाटीदार। आप सबकी पसंद पर अगला गीत समीर का लिखा हुआ, संगीत हिमेश रेशमिया का। इस गाने को आवाज़ दी है सुनिधि चौहान और केके ने। फिल्म का नाम है अक्सर।

मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाणकर, सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन गवाणकर, बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाणकर, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, नागचुन रोड खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक और मोहम्मद उमर डावर। आप सबकी पसंद पर आखिरी गाना सुखविंदर सिंह की आवाज़ में जलीस शेरवानी के बोल, साजिद वाजिद का संगीत, फिल्म का नाम तेरे नाम।

दोस्तों, इस कार्यक्रम के साथ आपकी जो लगन है बस यूं ही लगाए रखें, और फिलहाल आपके अपने इस कार्यक्रम से चमन सालवार को दें इजाजत। नमस्कार। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस।

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को सुबह 6:15 पर आयोजित होने वाले विशेष ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की है। इसमें कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीयन कराया जा सकता है। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्यसभा के लिए भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर कल भोपाल में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख प्रावधानों, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, गुणवत्ता अनुसंधान और नियामकीय सुधारों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। भोपाल के हलालपुरा स्थित पटाखा दुकान में देर रात आग लग गई, जिससे 70 फीट ऊपर तक की लपटें उठीं। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। सूचना मिलते ही दमकल गाड़ियां और भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। 10वें ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला मैच आज इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच बर्मिंघम में खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस विश्व कप में 12 टीमों द्वारा 7 स्थानों पर 33 मैच खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को होगा और भारत के प्रख्यात निशानेबाज और एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज निधन हो गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

0: नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, इंतजार केवल समय का बीतना नहीं बल्कि आशाओं का खिलना भी है। जिस तरह तपती हुई धरती आसमान में उमड़ते बादलों को निहारती है, सूखे खेत जिस तरह बारिश की बूंदों के लिए बेचैन रहते हैं, जिस तरह अंधेरी रात भोर की पहली किरण का स्वागत करने के लिए जागती है, जिस तरह बंद कली सूरज की ऊष्मा लेकर मुस्कुराने का इंतजार करती है, हमें मालूम है कि आप भी ठीक उसी तरह अपने पसंदीदा गीत इस कार्यक्रम में सुनने का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये गीत आपके लिए केवल सुर नहीं होते, ये आपके लिए कभी यादों की खुशबू होते हैं, कभी बीते हुए पलों की दस्तक होते हैं, कभी ये गीत दिल की अनकही बातों का आईना होते हैं, तो कभी आपके एहसासों का दरिया होते हैं। तो आपकी फरमाइशों का गुलदस्ता लेकर इस फोन इन कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं। चलिए कुछ पल जिंदगी की भागदौड़ से चुराएं, कुछ पल यादों की गलियों में बिताएं। आइए कुछ पल संगीत की उस नदी में बहें जहां हर लहर एक नया एहसास लेकर आती है। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: धन्यवाद, मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ। दीदी,
0: राजेश जी, कैसा है देवास और कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, जैसा भोपाल वैसे ही ये है। यहाँ पर बैंक नोट प्रेस है और जैसे माता चामुंडा की वो है पहाड़ी पे
0: जी,
1: और जो भी क्षेत्र है ये
0: जी जी जी जी। तो राजेश जी, कौन सा गीत सुनवाएं आपको
1: आज? गीत ये शिकारी पिक्चर का गीत सुनवा दीजिए, तुमको पिया दिल दिया लता जी और उषा मंगेशकर की आवाज में।
0: क्या बात है,
1: आपका संगीत है,
0: बहुत ही मीठा गीत है लता जी और उषा जी की आवाज में, और मुझे लगता है कि सभी श्रोताओं को भी पसंद आएगा। तो चलिए,
1: हमारे लेटर का ध्यान रखो कि लेटर बहुत कम लिए जा रहे हैं इसमें।
0: चिट्ठियाँ आप लगातार लिखिए, पत्र आपके शामिल होंगे, ठीक है? तो राजेश जी, आपने फोन किया, आपका आभार करते हैं और आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार जी।
0: नमस्कार। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, गुरमुख सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम प्रज्ञा कला, जिला जलंधर, पंजाब से।
0: गुरमुख जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में।
1: जी मैम, धन्यवाद। आप
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ मैम। रात बारिश हुई, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, इसलिए अच्छे हो गए, फोन लग गया और भी अच्छे हो गए।
0: बिल्कुल, यहाँ भी मौसम इसी तरह का है और फोन लग गया, इसलिए हम भी बहुत खुश हैं। तो रेडियो चल रहा है आपका, गीत संगीत में रुचि है आपकी बहुत।
1: जी मैम, गीत संगीत, खास रफी साहब और लता जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। दुनिया में ना कोई आया ना कोई आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे लता जी और रफी जी की आवाज में, अगर वो आपके पसंदीदा कलाकार हैं तो।
1: दिल का हीरा, मूवी का नाम, एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी।
0: दिल का हीरा, इस फिल्म का गीत,
1: जी मैम,
0: एक पत्थर दिल को, ठीक है। तो चलिए,
1: जी मैम,
0: लता जी और मोहम्मद रफी की आवाज में गाया ये गीत आप तक भेजते हैं, आपके दोनों ही पसंदीदा कलाकार, उनकी आवाजें आप तक पहुंच रही हैं। इसी तरह जुड़े रहिए हमसे और सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: जी बिल्कुल मैम, धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम, श्री गंगा मेहरा बात करें नीमच से।
0: नमस्ते, नाम एक बार फिर बोलिएगा।
1: गंगा मेहरा।
0: गंगा मेहरा जी, कैसी हैं
1: जी? अच्छे हैं मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। गीत संगीत का शौक रखती हैं
1: जी मैम?
0: किस तरह के गीत पसंद आते हैं आपको?
1: 90 के दशक के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं और ओल्ड भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो ज्यादा नए होता है वो थोड़ा अच्छे नहीं लगते।
0: तो मतलब 90s के गीत पसंद करती हैं और जो पुराने गीत हैं वो आपको अच्छे लगते हैं। तो आज क्या फरमाइश है
1: मैम? मूवी का नाम है बेवफा सनम और गाने बोले दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा।
0: दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा, उदित नारायण जी का गाया हुआ गीत। तो चलिए आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए, गुनगुनाइए और इसी तरह खुश रहिए। बहुत बहुत आभार आपने फोन किया।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मैं इंदौर से जीनत परवीन कोहिनूर कॉलोनी से बोल रही हूँ।
0: जीनत परवीन जी,
1: जी
0: क्या करती हैं आप?
1: बस घर में ही काम।
0: घर का काम करते हुए रेडियो किस तरह से साथ देता है आपका?
1: रेडियो बस साथी है मेरा, और क्या, गाने सुनती रहती हूँ और काम भी निपटाती रहती हूँ।
0: जी, बड़ा अच्छा लगता है ना जब घर में
1: जी
0: रेडियो गुनगुनाता रहता है और आप डूबे हुए से काम करते रहते हैं, तो काम का
1: जी
0: पता नहीं चलता कि कितना काम किया, कितना वक्त हुआ, और आप बिल्कुल
1: जी
0: आनंद के साथ समय गुजरता है ना?
1: जी अब टीवी में तो क्या बैठ कर देखना पड़ती है, रेडियो में तो गाने सुनते रहो, अपना भी काम निपटाते रहो।
0: बिल्कुल, टीवी देखते हैं तो फिर काम रोकना ही पड़ता है।
1: मैं नीचे देर से आती हूँ, रात को 9 बजे टीवी देखती हूँ, बस 1-1.5 घंटे, फिर सो जाती हूँ 11 बजे।
0: और बाकी पूरे वक्त रेडियो चलता है।
1: जी पूरा वक्त का रेडियो, सब चैनल, कोई से भी,
0: जी,
1: इंदौर है, भोपाल है।
0: हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि रेडियो आपका इतना साथ देता है और आप रेडियो का इतना साथ देती हैं। कौन सा
1: जी
0: गीत सुनेंगी आज?
1: मैं वक्त पिक्चर का सुन

0: चाहूंगी। ए मेरी जोरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान। ये वाला
1: तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। बहुत
0: ये
1: ही
0: मेरी मम्मी और बहनों के लिए डेडिकेट रहेगा क्योंकि वो भी सुनती है।
1: जी
0: मम्मी
1: जी
0: का नाम
1: जी
0: है मंदसौर में रहती, नूर भी,
1: हाँ।
0: अंजुम, गजाला, शम्मी, शाइस्ता, रुखसाना, रोशन।
1: तो चलिए, बहुत ही लोकप्रिय ये गीत है, आप तक
0: जी
1: भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
0: शुक्रिया मैम।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
1: कालीचरण यादव, ग्राम पंतल बरादरी से।
0: कालीचरण यादव जी, कैसे हैं?
1: अच्छी है मैडम जी।
0: रेडियो किस तरह से साथ देता है आपका, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: मैं सब सुनता हूँ, ग्वालियर की आकाशवाणी की प्रोग्राम सुनता हूँ, भोपाल के सुनता हूँ।
0: अच्छा,
1: और रेडियो चल रहा है, ग्वालियर चल रहा है, मेरा उसमें नाम बनता है, मेरा हर नाम बनता है रेडियो में।
0: जी जी,
1: और ग्वालियर में बहुत प्राण होता है ग्वालियर ग्रंथ।
0: अच्छा, और कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, किस तरह के कार्यक्रम पसंद करते हैं?
1: मैं कार्यक्रम आपकी परमाश कार्यक्रम,
0: मतलब फिल्म संगीत में विशेष रुचि है आपकी।
1: भोपाल कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे, ग्वालियर के बंद हुए कार्यक्रम, सुबह सुबह चंदा कार्य बहुत परमाश।
0: जी जी, कौन सा गीत सुनवाए आज?
1: गोरा काला पिक्चर सुनवा देना, बगैर जता की आवाज में, धीरे धीरे बोल के सुनना ले,
0: धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।
1: जी जी, प्राण गान कहो नजरे को।
0: जी जी, तो कालीचरण यादव जी, आपने हमें फोन किया, आपका गीत आप तक भेजते हैं, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: धन्यवाद मैडम,
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मेरी बहना।
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे
1: और
0: हैं?
1: आप कैसे हो बहना मेरी? चलो
0: हम बहुत अच्छे हैं।
1: अच्छा, आप प्रभु की कृपा है आपके ऊपर।
0: हाँ, हमारे कौन से भाई बोल रहे हैं?
1: मैं आपका एक भाई बोल रहा हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ मैं,
0: जी
1: और मालेगांव से बोल रहा हूँ, तुलसीराम व्यास। पहले रिटायर हो चुका हूँ मैं, शिक्षक था पहले। अच्छा,
0: अच्छा, तो आप
1: रिटायर
0: शिक्षक
1: हो
0: थे?
1: चुके, मैंने पुजारी जी का काम चालू किया है।
0: बहुत अच्छी बात है।

0: तो क्या करूँ इस उम्र में, तो मैं भगवान की सेवा ही करना मेरे लिए सर्वप्रथम है।
1: बिल्कुल, और देखिए ईश्वर का स्मरण तो पूरे जीवन करना चाहिए, है ना।
0: मन नहीं लगता था तो मैंने मंदिर का काम चालू किया है, पुजारी का, मंदिर
1: जी,
0: की सेवा कर रहा हूँ।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है। और इसके हाँ, साथ ही रेडियो भी आपका साथ देता होगा।
0: हाँ,
1: जाहिर सी
0: रेडियो
1: बात
0: तो
1: है।
0: मेरा बिल्कुल, मैं 1955 और 56 से सुन रहा हूँ।
1: अच्छा, तो बहुत पुराने श्रोता हुए आप हमारे।
0: हाँ, पुराना रेडियो है मैडम।
1: जी जी जी जी
0: आज मेरे पिताजी भी वही सुनते थे, मेरा बालक भी वही सुनता हूँ और मैं भी सुनता हूँ। आकाशवाणी ये आकाश में अमर है और ये सबके दिलों में बसी है आकाशवाणी।
1: बिल्कुल, सबके दिलों में बसी है।
0: दिलों में। और हमारा एक नीमच में मेरा भाई है 82 साल का, उनका नाम आरसी जैन।
1: जी जी
0: वो भी बहुत पुराने गाने के बहुत आशिक है।
1: जी जी तो देखिए
0: तो ये
1: आकाश,
0: गाना उन्होंने मुझे दिया है फागुन का।
1: फागुन फिल्म का गीत, कौन सा गीत सुनेंगे?
0: कौन परदेसी मेरा दिल ले गया।
1: एक परदेसी मेरा दिल ले गया, आशा जी का गाया हुआ गीत।
0: बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर है।
1: जी
0: मैं
1: जी
0: मंदिर में प्रार्थना आपके आकाशवाणी परिवार के लिए रोज करता हूँ सुबह से शाम तक के।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर भाव है आपके।
0: मेरा ये आकाशवाणी एक परिवार है मेरा।
1: जी जी तो इसी तरह से आकाशवाणी से प्रेम बनाकर रखिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? नमस्ते मैम, प्रणाम करता हूँ। संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से। कुछ पंक्तियाँ पेश है आप तक और सभी सुनने वाले साथियों तक।
0: जी जी।
1: कहते हैं सुबह सवेरे सूरज आता भाई पूरब में लाली फैलाता, देव प्रकाश की किरणें हमको अंधकार से दूर भगाता।
0: वाह, तो एक जो नया दिन है वो कोरा सा हमारे जीवन में आता है, प्रकाश की भाषा में आता है और ये आह्वान करता है कि अपने जिंदगी में जो कुछ हम करें वो प्रकाशमय हो, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो संतोष,
1: चंचल और शीतल आवाज की धनी, या यूं कहे कि मधुर आवाज की मलका, आदरणीय मैडम सुनीता सिंह जी को मेरा प्यार भरा अभिवादन भी रहेगा।
0: नमस्कार नमस्कार। तो ये बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है मौसम?
1: जी मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ। बताऊँ आपसे मौसम की बातें, लगातार प्री मानसून की गतिविधियाँ हमारे मध्य प्रदेश में जारी है और इस बीच हमारा जो बघेल खंड है, खास करके उमरिया और शहडोल के आसपास, यहाँ पे बादल छाए हुए हैं और हल्की सी मध्यम बारिश हो रही है और अभी हवाएं चल रही है मैडम दिन में।
0: चलिए, तो मतलब मौसम सुहाना है।
1: जी बिल्कुल मैम।
0: तो इस सुहाने से मौसम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी मैम, जब कार्यक्रम चलते हैं ना, कार्यक्रम फोन करने गीत सुने कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा प्रसारण जाता है आपका जो कार्यक्रम आता है वतन करा, इतना ऊर्जावान हमें कर देता है, खास करके जब वीर शहीदों की बातें होती है आपके कार्यक्रम के द्वारा संचालित कार्यक्रमों में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। नमस्कार भोपाल एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें ज्ञान विज्ञान की बातें होती है, साथ में विशेषज्ञ महोदय अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है और सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रोचक और मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारण होते हैं
0: मध्य
1: प्रदेश के माध्यम से।
0: संतोष जी, आप बहुत ध्यान से रेडियो सुनते हैं, इस बात का हमें बहुत संतोष है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। कौन सा गीत सुनवाए आज?
1: मूवी का नाम है धड़कन और बहुत ही प्यारा सा गाना है मैडम, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं।
0: अगर गुनगुना दें दो लाइन तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों से मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो यार आते हैं।
0: वाह, बहुत ही सुरीला आपने गाया। तो ये जो स्वर है, ये जो मिठास है, आपकी जिंदगी में बनी रहे। आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया।
1: जी मैम, प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में अपने अगले श्रोता का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, नाम बताएं।
1: नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, मैं जगत सिंह चढ़ार ग्राम पिपली अबराई तहसील बेगमगंज जिला रायसेन से बोल रहे हैं मैडम जी।
0: जगत सिंह चढ़ार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप रेडियो से जुड़ रहे हैं, इस बात की हमें खुशी है। गीत संगीत में आपकी रुचि है, जाहिर सी बात है। किस तरह के गीत पसंद करते हैं
1: जी? पुराने गाना अच्छे लगते हैं, ज्यादा पुराने तो नहीं, 19 के अच्छे लगते हैं।
0: 90s के। अच्छा, और क्या करते हैं आप?
1: मैडम जी हम बैठे ही रहते हैं, दिव्यांग है तो किराने की दुकान चला रहा है अपनी।
0: अच्छा, आपकी दुकान है और दुकान के साथ आप रेडियो भी सुनते रहते हैं। कौन सा गीत सुनवाएं आज बताइए
1: जी? फूल और कांटे फिल्म का सुना दो, मैंने प्यार तुम्ही से किया है।
0: वाह, बहुत ही लोकप्रिय गीत है ये, मैंने प्यार तुम्ही से किया है। आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत, फिल्म का नाम है फूल और कांटे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।
2: मैंने प्यार

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नाम बताइएगा अपना।
1: मेरा नाम जीनत अंसारी है, मैं महेश्वर से बोल रही हूँ।
0: जीनत अंसारी, कैसी हैं आप?
1: हाँ मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। क्या करती हैं आप?
1: मैं हैंडलूम का काम करती हूँ।
0: अच्छा, महेश्वर की जो साड़ियां हैं वो तो बहुत प्रसिद्ध हैं।
1: हाँ, वर्ल्ड फेमस है
0: बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध है ना? तो
1: जी।
0: आप एक विरासत को संरक्षित कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो कितने घंटे दिन में काम करना होता है?
1: मैम, घर का काम करके जो भी टाइम फ्री मिलता है उसमें कर लेते हैं।
0: अच्छा, और आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, वो भी
1: नहीं,
0: सीख रहे
1: बच्चे
0: हैं?
1: अभी छोटे हैं, वो स्कूल जाते हैं।
0: अच्छा, अभी छोटे हैं बच्चे हैं।
1: हाँ जी
0: अच्छा जीनत जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि कितने दिनों के बाद आपने फोन किया है?
1: जी मैम, मैंने 1 फरवरी को लगाया था
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने तारीख बताई है, इससे हमें बहुत
1: जी,
0: सुविधा
1: मुझे
0: हो
1: याद
0: जाती
1: है।
0: है। इससे हमें बहुत सुविधा हो जाती है, अगर श्रोता हमें तारीख बता दें तो हम झट से अपना रजिस्टर पलट कर देख लेते हैं कि हाँ इस तारीख को बात हुई थी और इसके बाद बात नहीं हुई है, तो एक आसानी
1: जी
0: हो जाती है। तो हमें लगता है कि आपकी बात से हमारे जो दूसरे श्रोता हैं वो भी एक प्रेरणा लेंगे और वो तारीख याद रखेंगे कि किस तारीख को पिछली बार फ़ोन किया था। तो
1: जी
0: जीनत
1: मैम,
0: जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। कौन सा गीत सुनवाए बताइए।
1: मुझे तलाश मूवी का गीत सुनना है, प्यार
0: गीत के बोल।
1: बदलना जाना मौसम की तरह।
0: यार बदलना जाना मौसम की तरह, बहुत ही खूबसूरत
1: जी
0: गीत। तो चलिए आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत, तलाश फिल्म का। बहुत बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद आपने
1: मैम।
0: हमें फोन किया, बहुत शुक्रिया।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने अगले श्रोता का हम। नमस्कार, नाम बताएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आपका रेडियो कैसा है?
1: हमारा रेडियो तो बहुत अच्छा है और 90 साल हमारे रेडियो ने जो है पूरा कर लिए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि 100 साल पूरे हों, एक शतकीय पारी पूरी हो, है ना?
1: और 150 साल पूरे हो।
0: बिल्कुल, और उसका हम जश्न मनाएं, पहले तो 100 साल का जश्न मनाएं। तो देखिए इतनी लंबी यात्रा।
1: सुनीता जी क्या है
0: जी,
1: ये रेडियो की महत्ता आज भी घटी नहीं है। देखिए इतने साधन हो गए मोबाइल टीवी, लेकिन रेडियो अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसकी जगह अपनी जगह क्लियर है।

0: गुनगुनाइए ताकि फिर हम गाना आपके लिए प्ले
1: बिल्कुल बिल्कुल बुंदेलखंडी
0: करें।
1: गुनगुना रहा हूँ मैं।
0: जी जी
1: हाय बाले माँ हाय बाले माँ मरे जा रहे हम गर्मी में हाय बाले माँ। बहुत प्यारा गीत।
0: वाह वाह वाह बहुत ही मधुर गीत। और देखिए गर्मी की आपने बात की तो यह मौसम कह रहा है कि हाँ अब राहत होने को है, तो हम चाहते हैं कि अपनी फरमाइश भी आप गुनगुना दें तो हम आपका गीत आप तक भेज दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की जय, इधर संभालू गिरे उधर को नांगन सी लहराए।
0: फूलचंद पाल जी आप बहुत ही सुरीले श्रोता हैं, सुनकर बहुत खुशी हुई हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं।

श्रोताओं, आपकी फरमाइशों ने इस महफिल को सजाया, आपके साथ ने इसे संवारा और आपकी बातों ने इसे यादगार बना दिया। समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन ये धुने, ये गीत और ये एहसास हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे फूलों के बिछड़ जाने के बाद भी उनकी खुशबू भीतर बनी ही रहती है। तो अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की यह उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात दिल्ली में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राणा ने निशानेबाजी में देश को गौरवान्वित किया। उनका निधन भारतीय खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। मैक्सिको में फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैच में कल रात मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित इस विश्व कप में 48 टीमों द्वारा 104 मैच खेले जाएंगे और तुर्की में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय जोड़ी बी धीरज और कुमकुम मोहद ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपके प्यारे प्यारे पत्र हमारे हाथों में हैं और हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद के गीत। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने चुना है, मन्ना डे की आवाज़ है, फिल्म का नाम है दिल ही तो है। साहिल लुधियानवी ने गीत लिखा है, संगीत रोशन का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। भोपाल से कुसुम ज्योति अर्जुन परी और इनके परिवार ने सुनना चाहा है ये गीत। मिष्टी लक्ष्मी भूपेंद्र वर्मा इस गीत को पसंद कर रहे हैं। राकेश और डॉक्टर विनोद ने भोपाल से इस गीत को पसंद किया है। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर दिल ही तो है फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, मजरूह के बोल हैं, संगीत मदन मोहन का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर ने अमलेश्वर से ये गीत सुनना चाहा है। दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने इस गीत के लिए हमें पत्र लिखा है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सुरेंद्र और कुसुम भारद्वाज। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं बसंत बहार फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है मन्ना डे और भीमसेन जोशी ने। शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत शंकर जयकिशन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने राजिम से हमें ये गीत सुनने की ख्वाहिश लिख भेजी है। पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव का पत्र हमें मिला है। तो आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का ये गीत।

अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सहरा फिल्म का वो नगमा जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत रामलाल का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा।

आपको सुनवा रहे हैं गुलजार का लिखा नगमा, आवाज भूपेंद्र और सुलक्षणा पंडित की। कानू रॉय ने संगीत तैयार किया है। फिल्म का नाम है गृह प्रवेश। पसंद आप सब श्रोताओं की। देवास से मनीष, मृत्युंजय, शिखा और पूनम ने इस गीत को सुनना चाहा है। मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न वाल्मीक, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल और अजय खिरोड़कर इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं इन सब के साथ हम भी गृह प्रवेश फिल्म का ये नगमा।

0: हाँ क्यों, क्या किया है मैंने?
1: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
0: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: गृह प्रवेश फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मैं डॉक्टर अजय सिंह, आकाशवाणी।

0: पुरानी 9 दशकों से भारत की आवाज़ रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जंग लगी तलवार। आज सुनिए इसकी 7वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना बलबीर स्वामी दलित बस्ती में सभा को संबोधित करते हुए हड़ताल के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। वो कंपनी को दिए जाने

वाले नोटिस को पढ़कर मजदूरों को सुनाता है। मजदूर कहते हैं कि हड़ताल का प्रभाव उल्टा पड़ा तो वे यूनियन नेताओं को साई के बालू में जिंदा दफना देंगे। यशवंत अकेले में नारायणी के विषय में सोचता है। लिचू और शिबू हड़ताल को लेकर अपने नजरिए से बात करते हैं। यशवंत नारायणी से शिबू का हालचाल पूछता है। नारायणी उसे घर आने के लिए कहती है। लिचू और शिबू दलित मजदूरों की दुर्दशा पर बहस करते हैं। अब आगे।

0: भगवान भी कितना निर्दयी है, खाने पहनने को तो देता नहीं, शरीर को रोगी जरूर बना देता है। हम गरीबों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, इससे तो मरना बेहतर है।
1: नारायणी
0: बोलो।
1: तू ठीक कहती है नारायणी, मैं आभागा तुझ पर बोझ बनकर जी रहा हूँ।
0: नहीं नहीं
1: नारायणी, तू एक काम कर, मेरा मेरा गला दबा दे नारायणी, मेरा गला दबा दे। ना रहेगा पास और ना पूछेगी बात।
0: क्या कह रही हैं आप?
1: अरे मैं सच कह रहा हूँ नारायणी, अपना ये बोझ अब मुझसे सहन नहीं होता। अरे अब तो मरकर ही शांति मिलेगी।
0: नहीं नहीं ऐसा ना कहिए।
1: मुझे मार डाल नारायणी, मुझे मार डाल, मुझे मार डाल। अरे मुझे मुक्ति दे दे, मुझे मुक्ति देकर तू भी मुक्त हो जा। जा जा मेरे भार से।
0: नहीं नहीं नहीं स्वामी नहीं, आपके बिना मैं नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। पति अपंग हो या बीमार, एक औरत का वही सबसे बड़ा सहारा होता है। फिर कभी ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालना, कभी ना निकालना।
1: नारायणी
0: ये क्या? मुन्ना रोने लगा। इसे भी अभी उठना था। मैं क्या करूं? मुझे काम पर जाने को देर हो रही है, क्या करूं मैं?
1: नारायणी नारायणी तू जा, तू जा, मैं इसे चुप करा लूंगा। तू जा।
0: कैसे जाऊं, कैसे जाऊं मैं?
1: चुप करा लूंगा, तू जा, जा।
0: एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती है, कैसे जा सकती है? नहीं मैं नहीं जा सकती ऐसे। हाँ मेरे मुन्ने आजा, हाँ बेटा मेरी गोद में आजा, आजा। मत रो मत रो मेरे लाडले, चुप हो जा। ठीक ठीक मैं तुझे लोरी सुनाऊंगी, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे क्यों तो और जोर से रोने लगा?
1: अरे नारायणी, भूखा बच्चा रोएगा नहीं तो क्या करेगा, क्या हंसेगा, हंसेगा ये?
0: तो मैं भी क्या करूं, दूध भी खत्म हो गया है, क्या पिलाऊं इसे? हाँ पानी पिला देती हूँ। सुनो, काम से वापस आते समय 5 रुपए का दूध ले आऊंगी, ठीक है ना?
1: ठीक है, अभी तो इसे चुप करा।
0: हाँ पानी पिलाती हूँ, ले ले बेटा पानी पी ले। अरे अरे क्या करूँ मैं, ये तो चुप ही नहीं हो रहा, क्या करूँ मैं?
2: अरे शिभू घर में हो क्या?
1: कौन है भाई?
2: मैं यशवंत।
1: हो यशवंत भाई, आओ आओ आ जाओ, अंदर आ जाओ।
3: कैसा है शिबू?
1: अरे यशवंत भाई, लाचार इंसान कैसा हो सकता है? भगवान से दिन रात ये मांगा करता हूँ कि मुझे बहुत दे दे
3: शिबू,
1: बहुत दे दे मुझे, पर नहीं, भगवान गरीबों की फरियाद कहाँ सुनता है?
3: खबरदार शिवू, जब तू कभी मरने की बात की तो। अरे अभी तो तुझे बरसों जीना है, बरसों, समझा?
4: यशवंत बाबू, आप किसी

0: काम से आए थे?
1: हाँ, बस तुम लोगों का हालचाल पूछने आया था। एक बात और।
0: कौन सी बात?
1: परसों नोटिस की मियाद खत्म हो रही है, परसों से हड़ताल शुरू होगी, बस यही बताने आया था।
0: हड़ताल? यशवंत बाबू, हड़ताल शुरू हो गई तो हम खाएंगे क्या?
1: अब
0: हम तो रोज कुआं खोदकर पीने वालों में से हैं, बिना मजूरी किए तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा ना।
1: तेरी बात में दम है नारायणी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना।
0: हमारे पास खोने के लिए है ही क्या? अपने पेट पर तो हम पत्थर बांध भी ले, पर बच्चों के मुंह से दूध तो नहीं छीन सकते ना।
1: धैर्य से काम ले नारायणी, धैर्य से काम ले। देख, इस हड़ताल का नतीजा जरूर अच्छा निकलेगा, और तब कोई बेकार नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, सब खुशहाल हो जाएंगे। अच्छा शिबू, अब मैं चलता हूँ, दूसरे लोगों को भी ये बात समझानी है।
2: अच्छा नारायण, ठीक है।
0: आप भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए।
3: सुनो भाइयों,
4: सुनो, क्या
3: मेरी बात ध्यान से सुनो।
4: अरे तुम क्या कहना चाहते हो काका? और तुम्हारे हाथ में ये डिब्बा कैसा है?
3: कैसा है भाई? यही तो बताना चाहता हूँ मैं। मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस डिब्बे में अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर डालें।
4: किस लिए काका?
3: अरे परसों से हड़ताल शुरू हो रही है, भगवान ना करे ऐसा दिन आए। मगर जब बच्चे भूख से बिलखने लगेंगे तो इन्हीं पैसों से उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। अरे आओ आओ, सभी लोग इस डिब्बे में पैसे डालो।
5: ठगने का धंधा अच्छा बनाया तुमने, क्या समझता है तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगे हम लोग?
6: जब डिब्बा भर जाएगा तो इसे लेकर चंपत हो जाओगे। हमें मूर्ख समझ रखा है क्या?
3: नहीं भाइयों, नहीं, ना तो मैं ठग हूँ और ना ही बेईमान। मुझे अंदेशा हो रहा है कि हम लोगों पर संकट के बादल छा जाएंगे। हमारे बच्चे भूख से बिलख बिलख कर दम तोड़ देंगे। रोटी के एक एक टुकड़े के लिए इंसानों और जानवरों में लड़ाई होगी। ऐसे बुरे वक्त के लिए मैं तुम लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ भाई।
5: इस बूढ़े का दिमाग फिर गया है, उधर यूनियन वाले चंदा ले रहे हैं। अरे फिरा, अरे चलो चलो भाइयों, अरे चलो अपने काम पर चलो।
3: अरे ऐसा नहीं है, सुनो,
5: मैं
3: चले गए, सब चले गए।
7: सब नहीं काका, मैं हूं ना।
3: तू भी चला जा बेटा, जब कोई नहीं रुका तो तू क्यों रुका हुआ है?
7: क्योंकि मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है।
3: सच?
7: हाँ काका। काका, मेरी जेब में कुल 2 रुपए हैं, ये मैं आपके डिब्बे में डाल देता हूँ।
3: भगवान तेरा भला करे, औरों को भी इसी तरह सद्बुद्धि दे।

0: मजदूर साथियों, मजदूर साथियों, कंपनी को दिए नोटिस की मियाद आज खत्म हो गई। कंपनी के अधिकारियों ने हमारी मांगों को गैर कानूनी ठहरा दिया है। आज से हम हड़ताल पर हैं। आज से काम बंद। सभी मजदूर अपनी एकता का परिचय दें और यूनियन के जलसों और सभाओं में भारी तादाद में हिस्सा लेकर कंपनी को अपनी मांगों को मनवाने के लिए मजबूर कर दें। सभी लोग नारा लगाएं, मजदूर एकता
1: जिंदाबाद,
0: जिंदाबाद, मजदूर एकता
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
0: हर जोर जुल्म की टक्कर में
1: संघर्ष हमारा नारा है।
0: हर जोर जुल्म की टक्कर में
1: संघर्ष हमारा नारा है।
2: लो भैया शिवू, अरे हड़ताल शुरू हो गई। कल तक काम ही काम रहता था, मगर अब तो बेकार हो गए। अरे भैया, खाली बैठे बैठे तो समय काटना भी मुश्किल हो गया है।
3: अरे लीचू, मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है भाई। हाँ, तुम जैसे लोगों के लिए जरूर मुश्किल हो गई है।
2: अरे जगन्नाथ, अरे तू क्या कर रहा है बेटा?
4: बापू देखो, मैंने अपना नाम लिखना भी सीख लिया है।
2: अच्छा,
4: जरा पढ़कर तो देखो, ठीक लिखा है?
3: अरे वाह। अरे क्या तू हमारा नाम भी लिख सकता है? हैं, लिख सकता है क्या?
4: हाँ।
3: चल रहने दे, हमें कौन सा पढ़ना आता है।
2: हाँ शिवू, जिंदगी में हम दोनों ने अपना नाम भी लिखना नहीं सीखा है।
3: लीचू भैया, हम तो ठहरे अंगूठा टेक। हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है।
2: सही कहते हो भैया।
4: बापू।
2: हाँ क्या है?
4: मैं खेलने जाऊं?
2: हाँ जा, लेकिन जल्दी लौट आइयो। अच्छा
4: ठीक है बापू।
2: हाँ। हड़ताल से साई नदी कितनी शांत हो गई है ना शिवू। ना लोगों की भागम भाग है, ना क्रेशर की कान फोड़ू घर घर।

0: मेरे मजदूर भाइयों, हमारी हड़ताल को 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कंपनी के अधिकारियों ने हमसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की।
1: हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
0: शांत भाइयों शांत, आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। आज हमारा जुलूस कंपनी के दफ्तर तक जाएगा ताकि हम अपनी आवाज इन गूंगे बहरे अधिकारियों तक पहुंचा सके। पता चला है कि बलबीर स्वामी के साथ लोकल लीडर जी भी वहीं पहुंच रहे हैं।
2: यशवंत भैया
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
2: यशवंत भैया
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
2: यशवंत भैया संघर्ष करो,
1: हम तुम्हारे साथ हैं।
2: यशवंत भैया संघर्ष करो,
1: हम तुम्हारे साथ हैं।
0: नहीं भाइयों, मेरी जय जयकार करने की जरूरत नहीं है। बोलो मजदूरों की जय हो, मजदूरों की एकता की जय हो।
2: मजदूर यूनियन
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
2: मजदूर यूनियन
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
0: भाइयों, अब हमारा जुलूस और आगे बढ़ेगा और कंपनी के दफ्तर की ओर जाएगा। आप लोग मेरे पीछे जोर शोर से नारे लगाएंगे, बोलो लड़ेंगे,
1: जीतेंगे, जीतेंगे,
3: जीतेंगे,
1: लड़ेंगे,
3: जीतेंगे,
1: जीतेंगे।
0: अभी तो ये अंगड़ाई है,
1: आगे बड़ी लड़ाई है।
0: जो हमसे टकराएगा
1: चूर चूर हो जाएगा।
0: कंपनी होश में आओ,
1: होश में आओ, होश में आओ,
2: होश में आओ,
1: होश में आओ,
3: होश में आओ,
1: होश में आओ।
4: शाबाश यशवंत, शाबाश। जानते हो शास्त्री जी तुमसे बहुत खुश हैं।
5: अरे
4: तुमने जिस तरह से हड़ताल का नेतृत्व किया है, उस हिसाब से यूनियन के अध्यक्ष पद की कुर्सी तुमसे बहुत अधिक दिनों तक दूर नहीं रह सकती। शास्त्री जी का भी यही मानना है।
5: मुझे अध्यक्ष पद का कोई लालच नहीं है बलबीर स्वामी। हाँ, मैं तो बस उस दिन के इंतजार में हूँ जब कंपनी अपने घुटने टेक देगी और सभी दिहाड़ी मजदूरों को परमानेंट कर दिया जाएगा। तब किसी मजदूर की छटनी नहीं होगी और सब खुशहाल होंगे।
4: तू चिंता मत कर यशवंत, बस मजदूरों का जोश ठंडा मत पड़ने दे। और भगवान ने चाहा तो कामयाबी जल्दी ही हमारे कदम चूमेगी। जीत हमारी ही होगी यशवंत, जीत हमारी ही होगी। और एक दिन देखना, एक दिन कंपनी को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा।
5: भूखे पेट हड़ताल लंबे समय तक नहीं चल सकती बलबीर। इससे पहले कि मजदूर विवश होकर काम पर लौटना शुरू कर दें, उससे पहले ही फैसला हो जाना चाहिए।
4: तुम इसकी परवाह मत करो यशवंत, शास्त्री जी हाथ पैर मार रहे हैं और जल्द ही उसका परिणाम हम सबके सामने होगा। बस तुम मजदूरों को संभालो।
5: उसकी चिंता तुम मत करो, साइट के सारे मजदूर हमारे साथ हैं।
4: हाँ यशवंत, एक बात और।
5: क्या?
4: यूनियन का चंदा खत्म हो रहा है।
5: हाँ?
4: और तुम तो जानते ही हो कि बिना धन के आंदोलन नहीं चल सकता। तुम एक काम करो, तुम मजदूरों से चंदा लेकर यूनियन में जमा करवाओ।
5: लेकिन बलबीर, पिछले हफ्ते ही तो मजदूरों ने चंदा दिया था। 10 रुपए हर मजदूर के हिसाब से 4,000 मजदूरों से कुल 40,000 रुपए आए थे। सब इतनी जल्दी खत्म हो गए?
4: देखो शास्त्री जी, मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। हजारों झंडे बैनर भी बनवाने पड़े हैं, क्या इन पर कम खर्च आता है?
5: सो तो ठीक है बलबीर, लेकिन तुमने तो कहा था कि पैसा यूनियन के मुख्यालय से आएगा। तुम्हारी उस जुबान का, तुम्हारे उस वायदे का क्या हुआ?
4: देखो, मुख्यालय को लिखा जा चुका है और वहां से पैसा आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन तब तक हाथ पैर धरे तो बैठा नहीं जा सकता।
5: हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो बलबीर स्वामी।
4: देखो, तुम 10 रुपए हर मजदूर से चंदा इकट्ठा करो और यूनियन के कोष में जमा करवाओ, समझे?
5: हाँ, समझ गया बलबीर।
6: संभल के, आराम से।
7: अरे नारायणी, ये तो मुझे कहाँ ले आई?
6: नहा लो ना।

0: ভালো, কেউ দেখো নারায়ণ, সাইন কা পানি বহুত ঠান্ডা হে, ঠান্ডে পানি সে তো मैं अकर कर मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा।
1: मत करो, जल्दी से नहा लो, जब तक नहाओगे नहीं मैं बात नहीं करूंगी। हाँ,
0: अरे कमाल, ये भला कैसी जिद है नारायण। देख नारायण, मुझ पर रहम कर, इस ठंडे पानी से मुझे बहुत थक लग रहा है। हाँ नारायण, मैं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा।
1: नहाने से डरते हो?
0: नहीं,
1: चलो चलो जल्दी से नहा लो। अरे नहा लो ना, कुछ नहीं होगा, चलो जल्दी करो।
0: ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। शुरू बेटा, चढ़ जा सूली पर और उतर जा पानी में, भगवान भले करेंगे। उतर जा, अरे अरे बड़ा ठंडा पानी, अरे अरे बहुत ठंडा पानी, बचा, अरे बचा, अरे अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे, अरे साईं की धारा मुझे बाहर ले जा रही है, अरे बचाओ,
1: अरे बचाओ,
2: ये तो ठंड के मारे अकड़ गया है। नारायणी, बीमार आदमी को ठंडे पानी में क्यों नहलाया?
1: वो यशवंत बाबू, एक महीने से ये नहाए नहीं थे, मारे बदबू के मैं सो नहीं पाती थी, नहलाती नहीं तो और क्या करती।
3: अरे भैया बामू, ये नारायणी की देह को क्या हो गया है?
4: बेचारी पहले कितनी सुंदर थी, मगर अब उसके हाथ पैर तो देखो, ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लटका हो।
3: अरे भैया बामू, गरीब न होती तो किसी खूबसूरत रानी से कम न लगती।
4: अबे चुप, अब क्यों लार टपका रहा है तू?
3: अरे और तू क्यों उसे बार बार देख रहा है? अबे देखता नहीं, यशवंत उसके पति की सेवा कर रहा है, देख ले।
2: तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? चलो भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से।
3: सकले भैया बाबू।

0: मैं आपका किस मुंह से धन्यवाद करूं? आप मेरे पति को उठाकर घर लाए हैं। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी यशवंत बाबू?
1: नहीं नारायणी, नहीं, ये एहसान नहीं है। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अब तू एक काम कर, तेल ले आ, तो मैं इसके हाथ पैर की मालिश कर दूं, थोड़ी जान आ जाएगी इसमें।
0: यशवंत बाबू, इतनी सेवा तो मैं भी इनकी नहीं कर पाती। मैं आपका ये ऋण जिंदगी भर नहीं उतार

0: अरे शिवू भैया,
1: लिचू भैया,
0: जब से हड़ताल शुरू हुई है जीभ शराब का स्वाद चखने के लिए तरस गई है।
1: अरे हाँ लिचू भैया, अरे भैया हड़ताल से पहले काम करते थे तो 4 पैसे हाथ में होते थे। अरे मगर अब तो बदहाल हो गए हैं।
0: शिवू भाई, मेरा तो अब भी यही मानना है इस हड़ताल वड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। अरे हड़ताल ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान एक दूसरे का मांस नोच नोच कर खाएंगे। हाँ
1: हाँ लिचू भैया, सच कहता है तू, बिल्कुल सच कहता है।

0: हेलो, अब तो गिद्धों और चीरों ने भी मंडराना शुरू कर दिया है। हाँ, शायद इन्हें भी आभास हो गया है शिवू के थोड़े दिनों बाद यहाँ पर इंसानी लाशों के ढेर लड़ने शुरू हो जाएंगे।
1: अरे तभी तो भोजन की तलाश में ये यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं।
0: शिवू, कैसा दृश्य होगा, भूख से मरने वाले इंसानों का मांस नोच नोच कर परिंदे अपना पेट भरेंगे।
2: अरे ना, अरे लीजिए ना, मत बोल ऐसा, अरे मत बोल।
1: भगवान ना करे ऐसा हो। अरे लीजू, क्या पता उन लाशों में मेरी और तेरी लाश भी हो।
0: अरे अच्छा ही तो है शिवू, कम से कम मरकर परिंदों का पेट तो भर सकेंगे। अरे अब जिंदा भी हैं तो किसी जानवर से बदतर जीवन जी रहे हैं शिवू, बदतर जीवन।
1: हाँ लीजू, हाँ मैं जानता हूँ, हम सभी जानते हैं। और देखा नहीं तूने, अरे साहब लोगों के कुत्तों को भी दूध भात खाने को मिलता है, और एक हम है रे, अरे हमें तो सड़ा भात भी नसीब नहीं होता।
0: अरे क्या, अरे शिवू,
1: अरे सच कहता हूँ मैं।
2: अरे नारायण, अरे तू भाग कर क्यों आ रही है, अरे बोल ना क्या बात है।
3: मेरे पास ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है, ये लो 5 रुपए, लीचू के साथ जाकर दूध ले आओ, मुन्ना उठे तो उसे पिला देना, मैं चलती हूँ।
2: अरे पर सुन तो सही, तू जा कहाँ रही है।
3: देखो बड़ी मुश्किल से आज के दिन साहब के घर में काम मिला है, मुझे साहब के घर वापस जाना है। 2 बाल्टी कपड़े निकाल रखे है, उन्होंने ये रुपए दिए है। देखो तुम जल्दी से जाकर दूध ले आओ, बच्चे के पेट में कुछ तो जाए। मैं वापस जा रही हूँ, बच्चे का ध्यान रखना, दूध जरूर पिला देना उसे।
2: हाँ हाँ तू जा, मैं देख लूंगा।
0: शिवू, शिवू चल उठ, मेरा सहारा ले ले। अरे बच्चे को दूध देकर हम खलासी के लंगर तक जा सकते हैं।
2: खलासी लंगर, अरे
1: वाह वाह, अरे क्या मजे की बात कही है तूने।
2: अरे बात सुन, देख 1 रुपए का तो दूध आ जाएगा।
0: हाँ, हाँ।
2: बाकी बचे 4 रुपए। अरे
0: 4 रुपए में तो शिवू हम दोनों छक जाएंगे।
2: हाँ वाह वाह, अरे अच्छा एक बात तो बता लीजिए।
0: हाँ, हाँ।
2: क्या वो आजकल भी खलासी लंगर में साइकिल की ट्यूब में भरकर बरेली के बाजार से शराब आती है।
0: अरे आती क्यों नहीं है मेरे भाई, आती क्यों नहीं है, उन्हें भूखे थोड़े ही मरना है जो अपना धंधा बंद करेंगे।
2: ठीक कहता है तो। अच्छा सुन, सुना है कि वो

0: लोग साई नदी के मेंढक और केंचुए भी सड़ाते हैं।
1: अरे बिल्कुल ठीक सुना है शिवू, बिल्कुल ठीक। शराब का धंधा करने वाले भी क्या क्या तमाशा करता है शिवू।
2: अच्छा? साहब लोगों के घरों से विलायती शराब की बोतलें इकट्ठी करते हैं, फिर उसमें मेंढक और केंचुए सड़ाते हैं।
1: अच्छा?
2: और बाद में उसमें देशी शराब का घोल डाल देते
0: है। और हम लोग उसे चटकारे ले लेकर पीते है। अरे वाह लीचू भैया, मजा भी तो खूब देती है वो।
1: अच्छा जल्दी चल, जल्दी चल, बच्चा उठ गया तो शामत आ जाएगी।
0: अरे हाँ, अरे
1: सब खेत बिगड़ जाएगा।
0: हाँ,
1: हम दोनों को साथ देखकर वैसे भी लोगों के पेट में दर्द तो होने लगता है।
0: ये बात तो ठीक है।
1: चल जल्दी कर, चल
0: अरे अरे मेरा हाथ तो पकड़, चल चल चल।
1: आजा आजा।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत जंग लगी तलवार की 7वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास के दौरान 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को सुबह 6:15 पर आयोजित होने वाले विशेष ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की है। इसमें कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीयन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल के आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से मुकाबला होगा और 10वें ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही है। इंग्लैंड वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय महिला टीम का मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के साथ होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

पलों के बीच महकने की काबिलियत रखता है। तो चलिए अलसाई सी इस दोपहर के खूबसूरत से पलों में हम लेकर एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा। तो स्वीकार कीजिए हिमलता खरे का प्यार भरा नमस्कार। वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई, वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई, बचपन की मासूमियत न जाने कहाँ छूट गई। बहनों, हर बच्चा मुस्कुराना चाहता है, पढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, मगर कई बार गरीबी, अशिक्षा, जागरूकता की कमी, कोई मजबूरी या विपरीत परिस्थितियों के कारण बच्चों को मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। उनसे उनकी मासूमियत मानो रूठ सी जाती है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य बाल मजदूरी को पूरी तरह से बंद करने के लिए दुनिया भर में बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों से वंचित होने से बचाना है। इस दिन का उद्देश्य समाज को यह समझाना है कि बच्चों से मजदूरी कराना गैर कानूनी है, अमानवीय है। बचपन में बच्चों को पढ़ने लिखने और खेलने का अधिकार मिलना चाहिए, न कि उन्हें आर्थिक तंगी के कारण जोखिम भरे काम करना चाहिए। हर बाल श्रम से जुड़ा बच्चा यही महसूस करता है कि बहुत खूबसूरत था ये महसूस ही न हुआ, बहुत खूबसूरत था ये महसूस ही न हुआ, कब, कहां और कैसे छूट गया बचपन। यह दिन बाल श्रम से जुड़ी समस्याओं जैसे गरीबी और अशिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। बाल श्रम का अर्थ ऐसे शारीरिक अमानवीय कार्यों से है जो बच्चों के बचपन, उनकी क्षमता और गरिमा को छीनते हैं। यह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। बहनों, बाल श्रम को जड़ से खत्म करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, मगर इसे जड़ से खत्म करने के लिए हमें भी अपने कर्तव्य निभाने होंगे। बाल मजदूरी न करवाएं और न ही इनका समर्थन करें। बाल मजदूरी कराने वालों के प्रति शिकायत दर्ज कराएं। गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करें। लोगों को भी बाल श्रम के खिलाफ जागरूक करें। बच्चों को उनकी उमंग और मस्तियों में उड़ने देना चाहिए, ताकि वे विकास करें, आगे बढ़ें और समाज के विकास में सहयोग देकर लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बने। उड़ने दो परिंदों को अभिशोक हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को अभिशोक हवाओं में, लौट कर बचपन के फिर वो जमाने नहीं आते। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, मगर बहुत खूबसूरत होता है किसी के लिए जरूरी होना।

0: अभी बहनें सुन रही थी गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। जिंदगी की जंग में खुद की ढाल बनो, जिंदगी की जंग में खुद की ढाल बनो, मुसीबत के आगे कभी ना मलाल करो, सीखो तुम आत्मरक्षा के हुनर यहाँ, ताकि खुद पर तुम हमेशा एतबार करो। हाँ बहनों, हमारा जीवन अनमोल है और इसीलिए इसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। अपने मान सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा। आत्मरक्षा केवल शारीरिक कौशल नहीं, बल्कि यह सुरक्षा, आत्मविश्वास और मानसिक जागरूकता का मूल मंत्र है। यह हुनर किसी भी आपातकालीन परिस्थिति या खतरे के समय स्वयं की रक्षा करने और बिना डरे जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। वास्तव में जटिल परिस्थिति में स्वयं की रक्षा का सशक्त माध्यम है सेल्फ डिफेंस। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम आत्मरक्षा के गुण सीखें और खुद को विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रखें। आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स जैसे प्रशिक्षण ले सकती हैं, साथ ही परिस्थिति के अनुसार आप हिम्मत से काम लेते हुए आत्मरक्षा कर सकती हैं। सेल्फ डिफेंस हमें शारीरिक मानसिक रूप से खतरे के लिए तैयार रखता है। सतर्कता, जागरूकता, सही समय पर सही निर्णय और निडरता से हम आत्मरक्षा कर सकते हैं। आत्मरक्षा सीखने से आप बिना डरे कहीं भी आ जा सकती हैं। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। तो बहनों, आत्मरक्षा का हुनर जरूर सीखिए और जीवन को सरल, सुरक्षित बनाइए और निडर होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। सेल्फ डिफेंस सम्मान से जीने की आज़ादी देता है, वहीं आत्मरक्षा साहस और जागरूकता का प्रतीक है। यह केवल शारीरिक बचाव नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की ढाल है। छोड़कर उम्मीदें गैरों से मदद की मुसीबत की घड़ी में आत्मरक्षा का हुनर भी जरूरी है। पलक पर अगर हों आंसू तो ये नहीं काफ़ी, इन्हें शब्दों में पिरोने का हुनर भी आना चाहिए। हाँ बहनों, अपने हुनर से समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को शब्दों में पिरोकर रचनाओं के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हैं कवयित्री बहन। तो लीजिए सुनिए ये काव्य पाठ। कवयित्री बहन है डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला।
1: ये मेरी एक कविता है जिसका की शीर्षक है स्तब्ध। ये कविता मैंने लिखी है जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती हमारी गर्म हो रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, नदियां तरताल सूख रहे हैं, तो इसमें यह बहुत ही कम शब्दों में बड़ा संदेश देने वाली कविता है। और आखिरी के चार लाइनों में आप देखेंगे कि आप क्या करिए जिससे कि आप धरती की मदद कर सकें। तो ध्यान चाहूंगी, तो सुनिएगा। तप्त स्तब्ध धरा प्रारब्ध, मानव तृप्त करे संतृप्त, जलता अलाव गई शीतल छांव, हरियाली लुप्त खुशहाली विलुप्त, तपती बयार झुलसा संसार, यूं कहां गया माँ का दुलार, सूखी नदियां सूखे तरताल, यूं उठा बवाल जीवन बेहाल, कर दे उद्धार कर ले उपकार, यूं दोहन छोड़ यूं मुह न मोड़, करना विक्षिप्त अपना भविष्य, तू हाथ बढ़ा कुछ कर भला। तो ये एक कविता है जो धरती माँ को बचाने

0: ने उसका दोहन बचाने का आह्वान करती है। यह कविता मैंने लिखी है सर्कस के बारे में। जिंदगी को एक सर्कस की तरह मैंने इस कविता में बताया है, तो सुनिएगा। सर्कस, जिंदगी एक सर्कस है, सब नाच रहे हैं कमर कस। कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे, चाह कर भी चले न बस। कहीं बंदर कूदनी, कहीं हवा में झूलनी, कहीं बंदर कूदनी, कहीं हवा में झूलनी, कहीं धीमा, कहीं एकदम तेज, सावधान, कहीं गिरना नहीं। कहीं एक तार पे चलना, कहीं मुंह से आग उगलना, कहीं एक तार पे चलना, कहीं मुंह से आग उगलना, कभी टूटे कांच पे चलना, जीवन भी तो है ऐसा ही खेल। कोई हाथ बिना गाड़ी चलाए, कोई हाथ बिना गाड़ी चलाए, जैसे हर मुश्किल को ठेंगा दिखलाए। जिंदगी एक लंबा सर्कस, वो एक मदारी सबको नाच नचाए। कौन कहाँ पर कैसे करतब दिखलाएगा, इसका लेख जन्म से ही सब लिख कर लाए। सब मिलकर खेलेंगे खेल, सब मिलकर खेलेंगे खेल, जो गिरा वो निकले पर खेल चले, जो गिरा वो निकले पर खेल चले, जो बचा वो पूरी लगन से खेले, जो बचा वो पूरी लगन से खेले, अगले पल उसका भी निकास चले, अगले पल उसका भी निकास चले। क्योंकि जिंदगी एक सर्कस है, सब नाच रहे हैं कमर कस, कोई कभी ऊपर, कभी कोई नीचे, चाह कर भी चले न बस, जिंदगी एक सर्कस। ये मेरी एक कविता है हरी चूड़ियाँ। हम अक्सर देखते हैं हमारे समाज में लड़कियां आज भी दहेज की आग में जलाई जा रही हैं, या किसी न किसी तरीके से सताई जा रही हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से। तो ये एक लड़की का संकल्प बताती हुई कविता है कि अगर ऐसी कंडीशन या ऐसी परिस्थिति में वो फंस जाए तो उसको कैसे आगे चलना चाहिए। तो ध्यान चाहूंगी। हरी चूड़ियाँ, हरी थी चूड़ियाँ, हरी थी धरती, हरी थी चूड़ियाँ, हरी थी धरती, गांव का उसके वो खेत भी तो था हरा। हरी खनखनाती पहने थी वो चूड़ियाँ, लेकर चली मन में ससुराल का सपना भी हरा, लेकर चली मन में ससुराल का सपना भी हरा। नववधू के कुछ दिन तो खुशियों में निकल गए, नववधू के कुछ दिन तो खुशियों में निकल गए, उन हरी चूड़ियों की खनक से गूंज गए, पर ससुराल का सावन वैसा अल्हड़ ना था, वो मायके के आंगन जैसा मदमस्त ना था, उसमें माँ बाप के प्यार की झिड़की ना थी, उसमें माँ बाप के प्यार की झिड़की ना थी, मेहंदी भी अब की बार रंग चढ़ी ना थी। पिया की फीकी बातों जैसी ही थी, पिया की फीकी बातों जैसी ही थी, सासू माँ के तानों से जैसे रंग उसका उड़ गया था। हरी थी चूड़ियाँ, हरी थी धरती, रंग उड़कर अब फिर वैसा नहीं चढ़ेगा, रंग उड़कर अब फिर वैसा नहीं चढ़ेगा, मन की गांठों के अंदर कहीं छुपा होगा शायद, मन की गांठों के अंदर कहीं छुपा होगा शायद, दहेज की आग में हरियाली खो गई, जलती देह में कई जख्म जगमगा गई। दहेज की आग में हरियाली कहीं खो गई, जलती देह में कई जख्म जगमगा गई। बोली बाबा अब ना मैं फिर हरी चूड़ियों को पहनूंगी, बोली बाबा अब ना मैं फिर हरी चूड़ियों को पहनूंगी, कमजोर मन और तन में अब ज्वाला भर लूंगी, कमजोर मन और तन में अब ज्वाला भर लूंगी, मुझे कोई अब दहेज के लिए जला न सकेगा, मुझे कोई अब दहेज के लिए जला न सकेगा, लाख कोशिश करे जमाना ये मुझे अब दबा न सकेगा, लाख कोशिश करे जमाना ये मुझे अब दबा न सकेगा। एक कविता ये मेरी है अच्छा ही हुआ, कविता का शीर्षक है अच्छा ही हुआ। कई बार हम जिंदगी में सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, कुछ लोगों ने हमें सहारा नहीं दिया, या कुछ हमारे साथियों ने हमारी मदद नहीं की, या हमारे किसी सीनियर ऑफिसर ने हमारा फेवर नहीं किया, हमारी मदद नहीं की, तो हम बड़ा दुख फील करते हैं। मगर आप कभी पीछे पलट के अपनी ज़िंदगी को देखिएगा कि अगर आप मेहनत करते रहें, ईमानदारी से चलते रहें, तो आपके साथ अच्छा ही होता है। तो ध्यान चाहूंगी। अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया। मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया। अच्छा ही हुआ उन्होंने मुंह मोड़ लिया, अच्छा ही हुआ उन्होंने मुंह मोड़ लिया, जिनको हम चाह किए, जिनको हम चाह किए, क्योंकि कुछ और भी प्यारे रिश्ते बन गए, क्योंकि कुछ और भी प्यारे रिश्ते बन गए। अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी दोस्ती ठुकरा दी, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी दोस्ती ठुकरा दी। अपनेपन की खोज में अब कुछ नए दोस्त बन गए, अपनेपन की खोज में अब कुछ नए दोस्त बन गए। अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला। अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी इज्जत ना की, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी इज्जत ना की। हम इतने समझदार हो गए कि इज्जत करने का सलीका आ गया, हम इतने समझदार हो गए कि इज्जत करने का सलीका आ गया। अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला। अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी कीमत कम आंकी, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी कीमत कम आंकी। अपने को इतना तपाया, अपने को इतना तपाया कि बाजार में बेशकीमती हीरे से हो गए, कि बाजार में बेशकीमती हीरे से हो गए। अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला। मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया।
1: अभी बहनें सुन रही थीं काव्य पाठ। कवयित्री बहन थीं आराधना सिंह बुंदेला। ख्वाहिशों के काफिले भी अजीब होते हैं, ख्वाहिशों के काफिले भी अजीब होते हैं, ये वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते।

अभी बहनें सुन रही थी कन्यादान फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का। बहनों, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए साक्षरता बहुत जरूरी है, वहीं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त होने के लिए बहुत जरूरी है वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता यानी धन को समझने और उसके प्रबंधन की बुनियादी कला। इसके माध्यम से महिलाएं अपने धन को सोच समझकर कमाना, खर्च करना, बचाना और निवेश करना सीख सकती हैं। यह कौशल हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाता है। वित्तीय साक्षरता हमें आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। वित्तीय साक्षरता के प्रमुख स्तंभ हैं जैसे कमाई, बजट बनाना, बचत करना और उधार प्रबंधन। बहनों, वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें समझदार वित्तीय निर्णय लेने में मदद करती है, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाती है, बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल लेनदेन की शर्तों को समझने से वहीं हम धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं या सुरक्षित रह सकते हैं। महंगाई से निपटने और रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित जीवन जीने के लिए भी निवेश जरूरी है। साथ ही वित्तीय साक्षरता से हमें आर्थिक तनाव से मुक्ति मिलती है और सही बजट और बचत से हमें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। वित्तीय साक्षरता वास्तव में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की रीढ़ है। वित्तीय ज्ञान महिलाओं को नए व्यवसाय शुरू करने और धन सृजन के अवसरों को जानने में मदद करता है। बढ़ती उम्र या किसी अनहोनी की स्थिति में यह ज्ञान एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करता है। जब बहनें आर्थिक रूप से जागरूक होती हैं तो वे घर का बजट बेहतर तरीके से चलाती हैं और संकट के समय के लिए बेहतर बचत कर पाती हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से साक्षर और सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा भी कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो बहनों, वित्तीय साक्षरता से अपना जीवन खुशहाल बनाएं और सशक्त बने और निरंतर सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए समाज के लिए प्रेरणा बने। जो पैसों का मोल समझे वही सुरक्षित अपना कल करे, वित्तीय ज्ञान की शक्ति से हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे। बहनों, आज हम आर्थिक रूप से भले ही सशक्त हों मगर बहुत कुछ पाने की चाह में हम मानो मुस्कुराना ही भूल गए हैं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहती हैं, जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहती हैं तो हर पल मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। कभी चुपके से मुस्कुराकर तो देखना, कभी चुपके से मुस्कुराकर तो देखना, दिल पर लगे पहरे हटाकर तो देखना। ये जिंदगी भी आपके साथ साथ मुस्कुरा उठेगी, खुद पर कुछ लम्हे लुटाकर तो देखना। और बहनों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो बशीर बद्र साहब के इसी ख्याल के साथ कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो अगली मुलाकात तक के लिए अब अनुमति दीजिए हेमलता खरे को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
5: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में लीजिए, पहले सुनिए कृष्ण मोहन नायक के स्वर में योग गीत।

अभी आप सुन रहे थे जयंत विश्वकर्मा के स्वर में प्राणायाम गीत। इसी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सोनाली जलोटा के गाए गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म चलते चलते का गीत। बोल अमित खन्ना के हैं, संगीत है बप्पी लहरी का।

कभी कभी। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से मदद कर रही है, ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इन मसौदा नियमों को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। जनता इन पर अपने विचार, टिप्पणियां और सुझाव 27 मई तक सरकार को भेज सकती हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा कि सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकेंगे। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रहलाद जोशी ने आज खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके नामांकन पत्र रद्द किए जाने को चुनौती दी गई थी। प्रदेश में मॉनसून 17 से 18 जून के बीच राज्य के दक्षिणी जिलों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। आज मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। पन्ना जिले में नेशनल हाईवे 39 पर बीती रात एक सड़क हादसे में अजयगढ़ थाने में तैनात 26 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। शिवपुरी के कोलारस में कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वेयरहाउस परिसर में कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से बड़ी मात्रा में उर्वरक जब्त कर FIR दर्ज की गई है। भोपाल में आधी रात पटाखा दुकान में भड़की भीषण आग पर दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस घटना में लाखों का माल जलकर राख हो गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां

0: मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा

0: पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं IMO के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24 लाख रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जाँच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि NTA ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि NEET UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। NTA ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का

0: कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
1: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और अभी आप सुन रहे थे समाचारों की श्रृंखला। 2:30 हो चुके हैं और ये वक्त है हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम का, तो आइए आरंभ करते हैं इस कार्यक्रम को।

0: सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सुषमा आपके साथ और कार्यक्रम में सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और मेरे साथ साथ मेरे साथी भी हैं, उनका भी परिचय।
1: मैं विनोद कुमार, और हर बार की तरह हम कोई ना कोई नई चीजें अपने किसान साथियों के लिए लेके आते हैं और आज उसी पे बात करेंगे।
0: बिल्कुल विनोद, उसी पर बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं हमारे किसानों के लिए, चाहे वो नई नई जानकारी हो, खेती की बात हो, नई नई मशीनों की बात हो या फिर खाद की भी बात हो।
1: बिल्कुल,
0: और खाद आजकल असली खाद पर भी हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि नकली खाद बाजार में बहुत आ रही है, तो इस बात का ध्यान रखें किसान भाई बहन।
1: बिल्कुल, उसमें हमें ध्यान ये देना है। और दूसरा एक चीज और भी है, मतलब हम समझ
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सनम तेरी कसम से, आवाज़ आशा भोसले की है। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और इसे संगीत से सजाया है R.D. बर्मन ने, और पसंद है आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की। इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरव शर्मा। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म सनम तेरी कसम का ये गीत।

ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, महाराष्ट्र बीड़ शहर से प्रकाश पागरिया, पराग पागरिया, प्रदीप और केशव पटेल। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म त्रिशूल का गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशुदास की हैं, बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का। लीजिए सुनिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज

सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। आप सभी ने सुनना चाहा है साहिर का लिखा, खयाम का संगीत से सजाया हुआ गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है चंबल की कसम। लीजिए सुनिए।

आप तो ऐसे ना थे। इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बोल निदा फाजली के हैं और संगीत है उषा खन्ना का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। भाटापारा से ही दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत। धुर्रा बांधा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म आप तो ऐसे ना थे का ये गीत।

है हृदयनाथ मंगेशकर ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। राजा राम नगर देवास से ही राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल। सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज सनी। जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा और कालू भैया। गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल, गोविंद, सालग्राम और दशरथ। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म धनवान का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्यप्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेडियो संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। और मौसम विभाग ने आज भोपाल सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। शाम 6:00 सुनिएगा।

रात 8 बजे सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास इज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम खेल जगत में रात 9:30 पर आप सुनेंगे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप इस विषय पर प्राची तिवारी की वार्ता।

और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा रानू मजूमदार का राग सरस्वती में बांसुरी वादन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में विविध कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली। नमस्कार दीदी। जी
0: नमस्ते। किससे बात हो रही है हमारी?
1: सरिता कुमारी। दीदी
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो
1: जी।
0: बताइए, क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस ये घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। आप
0: अच्छा,
1: बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश
1: दीदी
0: रहें।
1: इतना आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तगाई कर रही थी।
0: जी, हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो
1: हाँ
0: बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी, प्रेम रतन धन पायो,
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: आज जी,
0: जी
1: मैं चांदनी जी बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़
0: चांदनी जी,
1: बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है।
1: जी
0: चांदनी जी
1: जी
0: क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं? गृहिणी हैं? क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए
1: जी मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी, क्या
1: और
0: बात है।
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है
0: देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी
1: जी
0: जी। अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी जी मेरे 3 बच्चे हैं मैम, दो
0: अच्छा
1: तो बेटे हैं मैम, एक लड़की है, एक
0: अच्छा,
1: गुड़िया
0: क्या
1: है
0: बात
1: मेरी।
0: है।
1: जी मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, तो दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक टैंक में है बेटा।
0: अच्छा, तो बड़े बच्चे हैं, तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी, तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो, तो हम बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा। हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे, और खाकी चवर कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी चवर आते थे ना पहले,
0: जी
1: खाकी
0: जी
1: कवर
0: जी
1: उसको चढ़ाते थे, फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे, उसके बाद
0: हाँ
1: फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए, वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया मम्मी हमको भी लगा के दीजिए, तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि
0: क्या बात।
1: बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे, और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्ची अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना
0: बिल्कुल,
1: है।
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी।
1: जी
0: आज
1: जी
0: बताइए,
1: जी
0: आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान, गाने के बोल है मैं ना भूलूंगा
0: मैं
1: मैं
0: ना
1: ना भूलूंगी।
0: भूलूंगी। तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नो जय सवाल बोल रहे हैं झांसी से। हाँ
0: झांसी से धन्नो जायसवाल।
1: झांसी।
0: धन्नो जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे हमारे
0: जी
1: 3 बच्चे हैं।
0: जी तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और दो लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते
1: सब
0: थे,
1: हम ही करते थे, मैडम सब हम करते थे।
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है, जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का, चलिए
1: हाँ,
0: आप ही
1: तुम
0: की
1: बिन तुम बिन।
0: जी, तो तुम बिन फिल्म का आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी। जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप
0: जी
1: बताइए।
0: जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए, क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण गृहिणी हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगी अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ,
0: जी
1: मैं
0: सुनाइए।
1: आपको एक अपनी रचना सुनाती हूँ।
0: जी
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई। जब से तुमको ना खुदा माना है, कुत्ते हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, गुफा में ढूंढती नहीं ठिकाना है। कविता है,
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सरस्वती चंद्र का
0: जी
1: छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: जी बेहद सुंदर गीत है, तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैला सुतार बात कर रही हूँ, बीड़ जिले से।
0: बीड़ जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा चल रहा
1: हाँ
0: है?

0: जीवन क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैसेज हूँ, और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, साठी चौक में।
0: जी
1: हाँ, उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
0: जी
1: गन्ने की, रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है।
1: बहुत बहुत
0: और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल, तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं, स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते
1: हाँ
0: हैं, सभी
1: यस,
0: का एक
1: हाँ हाँ
0: अपना अपना
1: यस,
0: अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना
1: बहुत बहुत बहुत। हाँ
0: जी। तो घर में आपके बच्चे भी
1: हाँ
0: हैं?
1: हाँ मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, और मिस्टर जो है तो काम भी करे थे यहाँ पे।
0: जी जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं, है ना, तो उन दिनों में बच्चों के कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल। और छुट्टों में भी कैसा करते, तो पढ़ाई में से ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है, तो फिर ये बुक लो, बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, जिसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू, तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
0: जी बिल्कुल, और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे
1: ओ बहुत बहुत,
0: करते थे?
1: हाँ ये शाम भी करते थे ना, वो उधर की पत्ता इधर इधर का उधर ऐसा करके हम
0: हाँ
1: उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
0: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ
1: हाँ
0: आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना
1: बहुत बहुत मैम,
0: जी। आपसे बात करके हमें
1: बहुत बहुत।
0: बहुत अच्छा लगा वैजयंती जी। आज
1: हाँ
0: बताइए आप
1: हाँ
0: कौन सा
1: मुझे
0: गीत
1: जिंदगी
0: सुनना चाहती हैं?
1: हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद है।
0: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है इसलिए
1: बहुत
0: आप सुनना चाहती हैं।
1: पसंद है, यस।
0: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है
1: जी
0: ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी, तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी, मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है। बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है, वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए,
0: जी
1: तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी,
0: जी
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी, हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ
0: जी
1: और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी, आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी,
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी,
0: जी
1: ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कंधे से मजबूत उसकी छत हो, छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो शहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूल्हा, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं से खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो, और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगले कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा ही गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम,
0: जी, किनसे बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजवे बोल रही हूँ मैडम। मैं नागपुर से। मैं
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: बस गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में, गाने
0: जी
1: का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं।
0: जी तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की। पापड़
0: जी, मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम करती हैं।
1: बनाते, ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते,
0: जी, तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से। ओ, घर के जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा।
1: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेशा, ये गाना सुनना है
0: बिल्कुल,
1: अग्निपथ 2 का।
0: आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता। कहाँ से बात कर
1: हाँ
0: रही हैं
1: जी,
0: आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से। ये
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: छोटा टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहां पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली, तो मैं
0: जी
1: वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा
1: हाँ
0: में
1: जी,
0: आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो
1: जी,
0: बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं, कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी
1: हाँ
0: आप
1: जी,
0: अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
0: अरे वाह।
1: तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई हूँ।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी, बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब आप यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है, या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम करते हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना
0: जी
1: होगा, तो
0: बिल्कुल जी
1: इसीलिए जड़ से उपचार करने के हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे, वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर
0: जी
1: वो बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा, अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते। मेरा
0: नमस्ते। ये तो बताइए, नाम क्या है आपका?
1: नाम सुनीता उइके। मैं
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी, सिकंदरा से। तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है और
0: अच्छा
1: बालाघाट है।
0: जी, बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी
1: हाँ,
0: है।
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी, हाँ जी।
0: जी, तो सुनीता जी हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: हाँ, देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा हैं, मेरे पति हैं, दो बच्चे हैं, देवर
0: जी,
1: के एक है, एक मेरा हूँ। हाँ
0: अच्छा। तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके अब?
1: नहीं, छोटे हैं दीदी, एक है अभी 9 साल का है, अभी ये मतलब 14 तारीख को हो जाएगा, 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी, तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे।
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं पूरा
0: अच्छा।
1: दिन, तो हाँ उनको भी कभी कभी समय मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ
0: जी
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ, बिल्कुल यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे
1: हाँ
0: गर्मी
1: दीदी,
0: की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी, आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया। आप ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुना था, मेरे घर आई है मम्मी परी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालगाना का इंदौर से मैडम
0: जी। ये
1: जी। एक
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ। गाने के बोले दिल का सुनना सा तारा ना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सखियों, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी

0: 02240024662। 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अंग्रेजी में 02228670288। 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज की हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी, और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नज़र उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नज़र उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफ़ेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नज़र रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नज़र उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नज़र पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नज़र दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नज़र से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नज़र का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफ़ेद कवर की डायरी में पेन नज़र आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फ़ोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फ़ोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाज़ा आवाज़ के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाज़ा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि। बहुत जगह है मेरे कमरे में, यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहां रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने। कोई जरूरत नहीं है, आप अंदर रखवाती हो या नहीं? नहीं। आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो। नहीं। अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो। पक्का ना? हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदल कर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज़ सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नज़र हटाकर मेज पर सजी महिला की फ़ोटो देखने लगी। फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती। पर बताना तो पड़ेगा ना? पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू। प्रेम। ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम जानते हो मेरी हालत, तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नज़र पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है, स्ट्रीट लाइट जल रही है, लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है, कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है, पूरे घर में अंधेरा है, लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकल

लगता है। तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया? सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना। बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली, क्यों दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

0: तेरे।
1: अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे, आखिर क्या कहें। मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया, अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए और ये भी कि आज अरविंद क्या पहनकर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ, वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो, क्या मैं कर दूँ मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा, बुआ ने ज्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो, अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ, मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ, मुझे खुले बाल पसंद हैं। अच्छा बाबा, जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी।

एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और

टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा। और अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी। और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने नामे हिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो। नहीं तो खूबसूरत हो तुम, वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो। बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो, कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे, पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई, लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूँ कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं, कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने।

0: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। कुछ ही पलों में ठीक 5 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत की कुछ बेहतरीन डीपटेक प्रतिभाओं को भारत के बाहर प्रदर्शित करना है। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मेक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे की शिक्षा सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेशवासियों से बाल श्रम से मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्यप्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। और 10वें ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही है। भारतीय टीम का मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के साथ होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के खास युववाणी कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना मित्र अनुपम खरे, लेकर आया हूं आज का युववाणी कार्यक्रम। साथियों आज के कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, साथ ही होगी वार्ता और होंगे मनोरंजन के लिए गीत भी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारी इस चर्चा के साथ, जिसका विषय है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि हर साल हम 12 जून को पूरे विश्व में मनाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य बालकों के अधिकारों की रक्षा करना है और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के अवसर प्रदान करना है। बाल श्रम गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और जागरूकता की कमी से उत्पन्न होता है। इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। ILO ने सन 1999 में वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 182 को अपनाया था। आखिर बाल श्रम का अर्थ क्या है, जिसे करने के लिए बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, जो उसकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है, जो उसकी आयु के अनुपात के अत्यधिक कठिन, खतरनाक या शोषणकारी होता है। 5 से 17 वर्ष

0: की उम्र के बच्चे जब ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य या विकास को बाधित करते हैं तो वह बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव भी हैं, जैसे शिक्षा को प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीबी उन्मूलन, गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता, जागरूकता अभियान, लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों से अवगत कराना, कानूनों का सख्त प्रवर्तन, बाल श्रम में संलग्न नियोक्ताओं पर कठोर कार्रवाई, स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी यानी एनजीओ और नागरिक समाज का सहयोग भी जरूरी है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर।
1: साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं वार्ता की ओर, जिसमें वार्ता का विषय है पत्रकारिता में युवाओं की सहभागिता, जिसमें वार्ताकार हैं अरविंद प्रजापति। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पत्रकारिता क्षेत्र में रोजगार और विभिन्न कोर्स। आकाश की तरंगों पर आप सुन रहे हैं एक विशेष प्रस्तुति। आज की हमारी वार्ता का विषय है पत्रकारिता क्षेत्र में रोजगार और विभिन्न कोर्स। बदलते समय में पत्रकारिता केवल समाचार पढ़ने या अखबार छापने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह समाज की चेतना, लोकतंत्र की आवाज़ और डिजिटल युग का सबसे प्रभावशाली माध्यम बन चुकी है। आइए इसी रोचक संसार की यात्रा पर चलते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ संवाद की आवश्यकता भी बढ़ती गई। पहले संदेश कबूतरों से भेजे जाते थे, फिर चिट्ठियां आईं, उसके बाद रेडियो, अखबार, टेलीविज़न और अब डिजिटल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक छोटे से मोबाइल स्क्रीन में समेट दिया है। पत्रकारिता समाज का दर्पण कही जाती है। यह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करती, बल्कि जनता को जागरूक करने, शासन और समाज के बीच सेतु बनाने तथा लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य भी करती है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है, इसमें रोजगार के असीम अवसर मौजूद हैं। यदि किसी व्यक्ति में लेखन क्षमता, बोलने का आत्मविश्वास, जिज्ञासा, रचनात्मकता, समाज के प्रति संवेदनशीलता है तो पत्रकारिता उसके लिए सुनहरे भविष्य का द्वार खोल सकती है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाचारों, विचारों, सूचनाओं और घटनाओं को विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचाया जाता है। पत्रकारिता के मुख्य उद्देश्य हैं सूचना देना, जैसे शिक्षित करना, मनोरंजन करना, जनमत तैयार करना, समाज में जागरूकता फैलाना। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती है। जैसे भवन की मजबूती स्तंभों पर निर्भर करती है, वैसे ही लोकतंत्र की मजबूती स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर निर्भर करती है। पत्रकारिता का इतिहास। भारत में पत्रकारिता का आरंभ अंग्रेजी शासन काल में हुआ। भारत का पहला समाचार पत्र हिक्की गजट माना जाता है, जिसे 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत उदंत मार्तंड से हुई, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर ने किया। स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। आज पत्रकारिता प्रिंट से निकलकर डिजिटल और सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार हैं प्रिंट पत्रकारिता, इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मैगजीन शामिल हैं। यह पत्रकारिता का सबसे पुराना रूप है। उदाहरण, दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिकाएं, रोजगार के अवसर, रिपोर्टर, सब एडिटर, फीचर राइटर, कॉपी एडिटर, प्रूफ रीडर। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, इसमें रेडियो और टेलीविज़न शामिल हैं। रेडियो की आवाज़ कल्पना के पंख देती है, जबकि टीवी दृश्य और दोनों संगम प्रस्तुत करता है। रोजगार के अवसर, न्यूज़ एंकर, रेडियो जॉकी, टीवी रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरा पर्सन। डिजिटल पत्रकारिता, आज मोबाइल ही मिनी न्यूज़ रूम बन चुका है। वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजिटल पत्रकारिता का हिस्सा है। रोजगार के अवसर, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल एडिटर, यूट्यूबर, पॉडकास्ट होस्ट, फोटो पत्रकारिता। एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। फोटो पत्रकार समाज की घटनाओं को कैमरे में कैद करता है। रोजगार फोटो जर्नलिस्ट, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, न्यूज़ फोटोग्राफर, खेल पत्रकारिता। खेल प्रेमियों के लिए यह आकर्षक क्षेत्र है। कार मैच रिपोर्टिंग, खिलाड़ी इंटरव्यू, खेल विश्लेषण। फिल्म और मनोरंजन पत्रकारिता, फिल्मी संगीत, टीवी सेलिब्रिटी जगत से जुड़ी खबरों का प्रसारण। रोजगार फिल्म समीक्षक, एंटरटेनमेंट रिपोर्टर, एंकर, खोजी पत्रकारिता। यह पत्रकारिता का साहसी रूप है, इसमें छिपे हुए सच को सामने लाया जाता है। कृषि पत्रकारिता, भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों तक नई तकनीकी और योजनाओं की जानकारी पहुंचाना कृषि पत्रकारिता का उद्देश्य है। पत्रकारिता में आवश्यक गुण हैं। पत्रकारिता केवल डिग्री से नहीं, व्यक्तित्व से भी चलती है। यह अच्छे पत्रकार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे कि जिज्ञासा, निष्पक्षता, साहस, लेखन कौशल, भाषा पर पकड़, समय प्रबंधन, तकनीक ज्ञान, संचार कौशल। पत्रकार की कलम तलवार से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। आज पत्रकारिता में रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। समाचार पत्र संस्थान, देश में अनेक बड़े समाचार पत्र हैं जहां पत्रकारों की आवश्यकता रहती है। उदाहरण दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान। समाचार चैनल टीवी चैनलों में एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर की मांग रहती है। उदाहरण आज तक, ABP न्यूज़, जी न्यूज़, रेडियो क्षेत्र। रेडियो आज भी ग्रामीण भारत की धड़कन है। विशेष रूप में आकाशवाणी ने सूचना और जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोजगार उद्घोषक, रेडियो प्रसोता, स्क्रिप्ट राइटर, कार्यक्रम अधिकारी। डिजिटल मीडिया कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से नौकरियां बढ़ रही हैं। ब्लॉग लेखन, वीडियो कंटेंट निर्माण, सोशल मीडिया हैंडलिंग। सरकारी क्षेत्र, सरकारी विभागों में जनसंपर्क अधिकारी और मीडिया अधिकारी की नियुक्ति होती है। प्रमुख संस्थाएं प्रेस सूचना ब्यूरो, जनसंपर्क विभाग, दूरदर्शन, आकाशवाणी। स्वतंत्र पत्रकारिता, आज फ्रीलांस पत्रकारिता भी लोकप्रिय हो रही है। लोग घर बैठे ब्लॉग, यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट के माध्यम से आय अर्जित कर रहे हैं। पत्रकारिता में आय अनुभव संस्था कौशल पर निर्भर करती है। शुरुआती स्तर पर इनकम 15,000 से 30,000 रुपये प्रति माह, मध्यम स्तर 40,000 से 80,000 रुपये प्रति माह, वरिष्ठ स्तर पर लाखों रुपये प्रति माह तक लोग अर्निंग करते हैं। लोकप्रिय एंकर और डिजिटल क्रिएटर इसमें भी अधिक कमाई करते हैं। पत्रकारिता से संबंधित प्रमुख कोर्स हैं। अब बात करते हैं उन कोर्स की जो इस क्षेत्र में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, अवधि 3 महीने से 1 वर्ष, विषय बेसिक पत्रकारिता, रेडियो प्रस्तुति, न्यूज राइटिंग। यह शुरुआती विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होते हैं। डिप्लोमा कोर्स, अवधि 1 वर्ष, प्रमुख कोर्स डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, स्नातक पाठ्यक्रम BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अवधि 3 वर्ष की रहती है इसकी। विषय रिपोर्टिंग, एडिटिंग, मीडिया कानून, विज्ञापन, जनसंपर्क। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम MA इन मास कम्युनिकेशन, अवधि 2 वर्ष की रहती है। इसमें पत्रकारिता के उन्नत पहलुओं का अध्ययन कराया जाता है। PhD, जो विद्यार्थी शोध और अध्यापन में रुचि रखते हैं वे PhD भी कर सकते हैं। पत्रकारिता के प्रमुख संस्थान हैं। भारत में कई प्रतिष्ठित संस्थान पत्रकारिता की शिक्षा प्रदान करते हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम है। यह वह दीपक है जो अंधकार से सत्य की रोशनी फैलाता है। आज के युवाओं के लिए पत्रकारिता रोजगार, सम्मान, रचनात्मक अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट क्षेत्र बन चुकी है। आवश्यकता है मेहनत, ईमानदारी और निरंतर सीखने की। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार श्रोताओं।
1: साथियों, अभी हम सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था पत्रकारिता में युवाओं की सहभागिता, जिसमें वार्ताकार थे अरविंद प्रजापति।
0: साथियों, जैसा हमें विदित है कि आजकल के बच्चे मोबाइल की लत के कारण बहुत सी समस्याओं में फंस रहे हैं। इसी से जुड़ी आज की हमारी दूसरी चर्चा है मोबाइल की लत विषय पर। मोबाइल की लत के कारण लोग अपना कीमती समय सोशल मीडिया, गेम और रील्स देखने में बर्बाद करते हैं। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में कमजोरी, सिर दर्द और गर्दन में दर्द जैसी समस्याएं होने लगी हैं। फोन से अधिक चिपके रहने के कारण अनिद्रा यानी नींद ना आना, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक बीमारियां पनपने लगी हैं। जैसे देखा जाता है कि छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है और वे किसी भी कार्य में ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसके आदि लोग वास्तविक दुनिया और परिवार से दूर होकर आभासी यानी डिजिटल दुनिया में सिमट जाते हैं। लोग बाहर खेलने या व्यायाम करने के बजाय घर में बैठकर फोन चलाना पसंद करते हैं, जिससे मोटापा भी बढ़ता है। यानी हम खुद ही अपनी समस्याओं को न्योता देते हैं। जब फोन पास न हो या इंटरनेट बंद हो तो व्यक्ति गुस्से या बेचैनी का अनुभव करने लगता है। सड़क पर चलते हुए या वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने से जानलेवा दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ जाता है। काम या पढ़ाई के दौरान बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की आदत से उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। मोबाइल एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन इसे खुद पर हावी न होने देना और सीमित उपयोग करना ही समझदारी है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी हमारे मोबाइल की लत विषय पर।
1: साथियों, अब ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा मधुर गीत।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: साथियों, अभी हमने जो ये गीत सुना, ये था फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से, जिसमें गायक थे कमाल खान, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था जतिन ललित ने। साथियों, बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और लेकर चलते हैं आपको इस चर्चा की ओर, जिसका विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI ने तकनीकी दुनिया में एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी है, जिससे जटिल समस्याओं का समाधान आसान हो गया है। उद्योगों और व्यवसायों में AI के उपयोग से उत्पादकता बढ़ी है और ऑटोमेशन के जरिए कार्यप्रणाली अधिक तेज हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में AI आधारित टूल्स छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षण यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग और त्वरित सहायता प्रदान कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में AI की मदद से बीमारियों की सटीक पहचान, रोबोटिक सर्जरी और नई दवाओं का अनुसंधान बहुत तेजी से हो रहा है। हमारे दैनिक जीवन में AI आधारित वर्चुअल असिस्टेंट जैसे एलेक्सा, सिरी और स्मार्ट होम उपकरणों ने जीवन को बेहद सुविधाजनक बना दिया है। सेल्फ ड्राइविंग कारों और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ने परिवहन को अधिक सुरक्षित और सुगम बना दिया है। बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में AI धोखाधड़ी का पता लगाने और जोखिम का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं साथियों, AI ने तकनीकी नौकरियों के नए अवसर पैदा किए हैं, वहीं पारंपरिक नौकरियों के स्वरूप में भी भारी बदलाव आया है। AI के बढ़ते प्रभाव के साथ ही डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और गलत सूचनाओं के प्रसार जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। साथियों, यह तकनीक मानव जीवन को असीमित संभावनाओं की ओर ले जा रही है, लेकिन इसका संतुलित और नैतिक उपयोग ही भविष्य की सफलता है। साथियों, ये थी हमारी छोटी सी चर्चा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के विषय पर।
1: साथियों, लेकर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा मधुर गीत।

साथियों, भी आपने सुना बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म से ये प्यारा सा गीत, जिसमें गायक थे अखिल सचदेवा और मनशील गुजराल। इसमें गीतकार थे अखिल सचदेवा और संगीत से भी सवारा था अखिल सचदेवा ने। साथियों, अब जाते जाते दे देते हैं आपको रोजगार सूचना भी। UP SSC योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है, जिसमें पद का नाम है UP SSC आबकारी कांस्टेबल, जिसमें पदों की संख्या है 722। आयु सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। इसकी शैक्षणिक योग्यता है UP SSC PET 2025 का वैध स्कोर कार्ड और भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं यानी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.uptsc.gov.in पर विजिट भी कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपने मित्र अनुपम खरे को। नमस्कार।

श्रोता अभी सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी जबलपुर से लीजिए, अब सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत धड़क 2 फिल्म से, स्वर श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल का, गीत रश्मि विराग का और संगीत जावेद मोहसिन का।

वनवास फिल्म से लीजिए अब सुनिए सोनू निगम, श्रेया घोषाल और मिथुन की आवाज़ में अगला गीत, गीत सईद कादरी का, संगीत मिथुन का।

लीजिए आप सुनिए, हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ है। गीत किरण का, संगीत राम लक्ष्मण का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:55 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। सुनिए हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 6:30 पर सुनिएगा लोक संगीत में आज राम सेवक श्रीवास्तव के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। शाम 6:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार हैं अन्नपूर्णा शर्मा। शाम 7:21 पर कृषि जगत। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता, पशु नस्ल सुधार का महत्व और शासन की नस्ल सुधार योजनाएं। इस विषय पर आप सुनेंगे डॉक्टर वैशाली खरे से बातचीत। शाम 8:35 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात 9:30 पर सुनिएगा आपके पसंदीदा गीत कार्यक्रम। जरूर सुनिएगा आपके मैसेज आपके गीत। रात 10:00 शास्त्रीय संगीत में आज सुनिएगा पंडित अजय पोहनकर का गाया राग बागेश्वरी में ख्याल। विलंबित रचना 1 ताल में, द्रुत 3 ताल में निबद्ध होगी। और रात 10:30 पर सुनिएगा मन भावन। आइए अब आपको अवगत करा दें हमारे कल के कुछ खास कार्यक्रमों से। कल सुबह 6:45 पर कृषि चर्चा में विषय होगा गौ पशुओं में तिल्ली ज्वर। 7:20 पर सुनिएगा गुड मॉर्निंग जबलपुर। सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम रूपक हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 9:00 सुनिएगा लोक रसधार कार्यक्रम में शोभित सिंह धुर्वे और राम प्रसाद सयाम के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को लीस में भारत इनोवेट्स का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन के दौरान भारत की नई पीढ़ी के नौ प्रवर्तकों, व्यवसाय जगत और वैश्विक जरूरतें पूरी करने वाले अनुसंधान समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र आईटीआई परिवर्तन के लिए रणनीतिक परामर्श सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य में 3 दिवसीय जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेशवासियों से बाल श्रम से मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हमारी सरकार बच्चों के हितों और शिक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। 10वें आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही है। भारतीय टीम का मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के साथ होगा।

0: और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के ठीक 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है। और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
3: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
4: हर पल चलती जाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
4: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
4: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
4: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
4: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
4: घर को खूब सजाती चींटी,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
4: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
4: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
4: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
4: काम बड़े करके दिखलाती,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
4: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
4: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: हमको यही सिखाती चींटी,
4: हमको यही सिखाती चींटी।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन

उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं, है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: کیوں نہ اپنائیں خوشیاں، اپنا کر منو درپن۔ کال کریں 844-844-0632 پر اور پائیں NCERT دوارہ اپنی شیکشک و بھاوناتمک سمسیاؤں کا سمادھان۔
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज के कलाकार हैं राम सेवक श्रीवास्तव।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों बाद ठीक 7 बजे हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने

0: आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाट लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधा के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the US, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by US naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. The US envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The ministry said such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Yatra. During the meeting, Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinated efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. The minister emphasized to further strengthen the security framework with the extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years of NDA government at the centre. Mr. Adhikari said, people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. He said that by giving fair price, the government of West Bengal is taking the lands from common people and handing over the lands to BSF. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit Nice in France on the 14th of June as the first stop of his two-nation European tour covering France and Slovakia. The visit carries special significance as it will be his first bilateral summit with President Emmanuel Macron since the two nations elevated their ties to a special global strategic partnership in February this year. From Nice, Mr. Modi will travel to Slovakia before returning to France for the G7 summit in Avignon, where India will participate as a leading voice of the Global South. India AI Mission today launched Varya, a distilled video model built to make frontier video AI affordable, accessible and relevant. Addressing the launch event in New Delhi, Secretary in the Ministry of Electronics and Information Technology, S. Krishnan said the launch of one of the foundational models supported under the India AI Mission marks a significant milestone in India's AI journey. He said that Varya represents the kind of research-led capability building that reflects the government's commitment to developing indigenous AI capabilities and fostering a vibrant deep tech ecosystem. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei Chen Su Yu 21-6, 21-9 in a one-sided quarter-final clash today. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston, Birmingham. The match is scheduled to begin at 11 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup 2026, co-host Canada will be up against Bosnia and Herzegovina in a Group B clash at Toronto Stadium tonight. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The encounter marks the first ever World Cup meeting between the two nations. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को किया खारिज। और केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में खेती में महिलाओं, खासकर माताओं और बहनों की भूमिका पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
2: महिलाओं की भागीदारी और कैसी बढ़े, युवा कैसे खेती की तरफ आकर्षित हो और नई तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन कैसे बढ़ाएं और किसानों की आजीविका कैसे सुनिश्चित करें, आय और बढ़े। एक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना मतलब भरपूर अन्न लोगों को भोजन के लिए प्राप्त हो और अन्न भी ऐसा हो पौष्टिक आहार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत की कुछ बेहतरीन डीपटेक प्रतिभाओं को भारत के बाहर प्रदर्शित करना है, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा चुना गया है। उन्होंने बताया कि 1200 से अधिक स्टार्टअप्स में से 13 क्षेत्रों में 120 से अधिक डीपटेक स्टार्टअप्स का चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वो चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ और खंडवा जिलों में भी सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर आज से जन कल्याण शिविर शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि NTA ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। आज बालश्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। प्रदेश के दक्षिणी जिलों में 17 से 18 जून के बीच मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मानसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आज एक बैठक में एमएसएमई उद्योगों के संवर्धन, जिला स्तर पर आने वाली कठिनाइयां और उनके निराकरण आदि पर चर्चा की। राजगढ़ जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। शहडोल जिले में 14 जून को ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सागर जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 28 से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। महाराजा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर छतरपुर जिले में लोक गायन, लोक नाट्य और संगीत पर केंद्रित विरासत महोत्सव का आयोजन 17 और 18 जून को किया जा रहा है। गुना कलेक्टर ने आकाशवाणी के भ्रमण के दौरान कहा कि आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, सटीकता और जन सरोकारों से जुड़े प्रसारणों के कारण लोगों के बीच विशेष स्थान बनाए हुए है। शहडोल संभागायुक्त ने वीरपुर से श्योपुर तक रेलवे लाइन का कार्य शीघ्रता से पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में अग्नि सुरक्षा, सुरक्षित निकासी मार्ग और लाइसेंस संबंधी नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैतूल वृत्त कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। उज्जैन संभागायुक्त आशय सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंदसौर जिले में मानसून और संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। श्री राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने में मदद की। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनबे बारे सबई भैया भौजी जिज्जी बिन्ना हरों से गुड्डन जिज्जी की राम राम। भैया हरो देखो जब आज हम घर से निकले तो इत्तो घाम हतो कि हम का बताएं। मनो भैया तन्न कई देर बाद मौसम ऐसो बोर आ गओ कि का बताएं। भैया हरो का बताएं हम तो ऐसे परेशान हो गए कि का बताएं। लेकिन भैया देखो बात तो अब जई है कि हम फिर जई के हैं कि का बताएं। मनो भैया हरो ए बेरा गर्मी ने तो इत्तो बेजा हैरान कर गई गर्मी की हम का बताएं। तो भैया देखो अब का बताएं तो खूब हो गई। मनो देखो ए बार की जो गर्मी हती सांची कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हैरान कर गई। ऐसा लगत कि बिल्कुल घर ही रहे आओ बाहर ना निकलो। और देखो ना दोपहरी में निकल के सब अपने अपने भीतर बिल्ले आने रहे थे और कैमरा लगाए रहे थे। भैया देखो अपन जैसे कैमरा लटका लियो तो उनके घुआ हो गए हैं ढीले। सो तन कई हवा चली और वे खुल जात लटके नहीं रहे। सो ऊपर से पचरा और लगाने पड़ा थे। सो कैमरा के पचरा लगाए और भीतर दबक गए। फिर कछु काम से कहूँ जाने ही है तो अथूली बेरा जब तनक जुड़ो हो जाए तब निकरत है। मनो जब निकर वो बिल्कुल ही जरूरी पड़ जात है सो तपती दोपहरिया में सोई निकरने पड़ा थे। जैसे हमें निकरने पड़ गओ थो हाँ भैया हरो 8-10 दिन पहलों की बात आए। कछु जरूरी काम से निकरे भर दोपहरी और जब लौटे सो हमने देखो हीरा कक्का के थे तन तन से मोड़ा मोड़ी निर्बक दोपहरिया में मूड़ पे खेप धरे चले आ रहे। अब देखो मूड़ पे तो पानी की खेप धरे मनो मोहम पे ऐसो पसीना चुचुआ रहो कि हम का बताएं। अब देख के तो हमें ऐसी गुस्सा आई कि हम का बताएं। मनो हमने रुक के पूछी काय बेटा तनक अथूली बेरा में भरते पानी तनक जुड़ो हो जातो काय भर दोपहरिया में हैरान हो रहे। सुबह कहन लगे कि हीरा कक्का के दोई बोर में पानी नहीं आ रहो और कुआं को पानी सोई नीचे चलो गो। सो उनने कही कि पानी भर दो। अब भैया हरो हम तो गुस्से ही में गए हीरा कक्का के ढेंगा और हमने कही काय कक्का कछु तो दया धर्म भाव चाहिए तुम में। सो कहन लगे का हो गो। सो हमने कही का हो गो कछु नहीं है 8-10 साल के लिए तन तन से मोड़ा मोड़ियन से तुम तपती दोपहरिया में पानी भरवा रहे कछु तो शर्म करो कक्का। सो कहन लगी कैसी बोल रही गुड्डन बिन्ना तनक तो सोच लियो कि तुम कौन से बात कर रही हो। सो हमने कही कि देखो जब तुम नहीं सोच रहे कि तुम कौन से काम करा रहे सो हम काय सोचें। सो कहन लगे सुनो गुड्डन बिन्ना यदि हम इनौरन से काम करा रहे तो बदले में हम इन्हें पैसा सोई दे रहे हैं। सो हमने कही कक्का भी मजबूर हैं तो क्या तुम उनकी जान ले हो। सो कहन लगे गुड्डन बिन्ना तुम चुप पाई रहो और हमारे बीच में बिल्कुल ना बोलो। सो हमने कही कक्का देखो अब हम बोले हैं तो अच्छे ही से बोल हैं। सो कहन लगे का अच्छे से बोलो। सो हमने कही जई कि गांव की कोनो समस्या होते तो आवाज़ उठावे के लाने तुम्हें सबसे आगे रहते हो नेताओं के संगे फोटो खिंचावे में और बस फोटो खींची और तुम नदारत हो जात हो। कहूँ वृक्षारोपण होने तो तुम पहले पौधा लगात भाई फोटो खिंचवात हो और ऊ के बाद कभों जाके तुमने देखो कि वो पौधा में कौनों ने पानी डारो कि नहीं डारो वो पौधा बचो कि नहीं बचो। तो कक्का काय तुम इतो दिखावा करत हो जे सब काम में जब तुम आगे रहता ही हो टाइम भी पूरो देत हो तो सच्चे मन से करो ना दिखावे के लाने काय करत हो। और पता है जुन जे 8-10 साल के मोड़ा मोड़ियन से काम करवावो बाल मजदूरी का हाथ है जुन बहुत बड़ो अपराध सोई है। अब हम तुम्हारी रिपोर्ट कर हैं और कि तुम बाल मजदूरी करवा रहे हो जो मोड़ा मोड़ियन से। सो कहन लगे गुड्डन बिन्ना तुम्हें जैसो लगे तुम करो हम आए थे नहीं अब पानी सो हम तो पानी भरवा हैं। तो हमने भी कही ठीक है देख जाओ कक्का हम का कर सकते हैं। फिर हमने जब गांव की पंचायत बैठी तब सबके सामने कक्का के चेहरा से नकाब उतारू काहे कि छुन्नू भैया को मोड़ा भी हतो उनके ते पानी भरवे बारे मोड़न में और बाहे ऐसी लू लगी कि डॉक्टरों ने तो जवाब दे दो कि अब जुने बचपा है। भगवान की दया से वो जैसी तैसी बच गओ। मनो हीरा कक्का खूब ही डरा गए और उन्हें अपनी गलती को एहसास भाओ। फिर तो वे सच्चे मन से गांव की समस्याओं को गंभीरता से लेने लगे और अबे तो गर्मी में अब वे अपने ते जब उन्हें खुद के घर में जब जल संकट देखो तब उन्हें जस समझ में आ गो कि अब गांव में पानी की समस्याओं को दूर करने को प्रयास कर वो बहुत ही जरूरी है। और भैया हरो हीरा कक्का की बातें तो अपन अबे और भी कर हैं। मनो देखो आप और कहो कि गुड्डन बिन्ना जब से आई हैं एक सांस में बोले जा रही हैं का बताएं करके। मनो भैया हम समझ रहे हैं तो देखो अब का है अपन चलत हैं हंसत हैं बोलत हैं और हंसत बोलत लोगी सुनत भाई अपन जीवन से जुड़ी मुद की सारी बातें कर हैं। मनो पहले सुन लेते हैं अपन जो लोगगीत जौन गा रहे हैं अपने सुंदर।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000।

0: वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: भैया यारो देखो, अपन है खेती किसानी वाले, तो खेती किसानी के संगे संगे ऐसे तो है नहीं कि अपन केवल अनाज ही उपजात रहे हैं, अपन के संगे संगे सहायक धंधा सोई करत हैं, जैसे कि पशुओं को होगा पशुपालन होगा या मुर्गी पालन होगा या ऐसे बहुत सारे हैं। तो भैया हरो, आप पशु यदि अपन पालत हैं तो उनकी नस्लें कौन सी होनी चाहिए, उनमें अपन का सुधार कर सकते हैं, उनकी कौन सी योजनाएँ चल रही हैं, जो सब कछु अपन को पता होने चाहिए। तो भैया हरो देखो, अबे अपन सुन है जब बहुत अच्छी एक भेंट वार्ता, मनो पहले हम आपसे जा बात कर वो चाहते हैं कि देखो, आज हमने आपको का बताई थी, अब भाई हमारे जो हीरा कक्का हैं उनकी जब हमने आपसे बात बताई तो भैया जाना कहने कि हम उनकी शिकायत कर रहे हैं। अब शिकायत ऐसी नहीं कर रहे मनो, देखो का होते कि जब भी गांव में कछु भी होते तो लोग फोटो खिंचावे आगे आगे होते हैं, कोई काम करो तो अच्छे से करो, मन लगा के करो और सच्चाई के साथ करो, तब अच्छो लगा थे। तो भैया अब हीरा कक्का भी सुन रहे हो तो हमारी बात को बुरो न मान लियो। तो देखो बात तो जा हो गई है और ई के संगे संगे हम आपको जा बता रहे हैं कि जैसे अपन खेती किसानी करते हैं तो अपन साथ में पशुओं को भी पालते हैं, अब पशुओं की नस्लें कैसी होनी चाहिए, सुधार उनको कैसे कर सकते हैं अपन, या फिर जो उनके लाने योजनाएं बनती हैं, इन सब की जानकारी अपन को पूरी होनी चाहिए। तो भैया हरो बिल्कुल जई जानकारी आज अपन ले हैं अपने जे भेंटवार्ता में, जौन अपन को जानकारी दे हैं डॉक्टर वैशाली खरे, और विषय को जो ही है पशु नस्ल सुधार को महत्व और शासन की नस्ल सुधार योजनाएं, तो अपन सुन लिए थे।
6: किसान भैया हरो, आज हमने अपने कार्यक्रम में बुलाव है डॉक्टर वैशाली खरे मैडम के लाने। आप सह प्राध्यापक हैं पशु अनुवांशिकी और अभिजनन विभाग पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर में। अपने लाने जानकारी दें हैं पशु नस्ल सुधार को महत्व और शासन की जो योजनाएं हैं वे नस्ल सुधार की योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले तो मैडम हम अपने कार्यक्रम में आपको स्वागत करते हैं, नमस्कार।
7: नमस्कार
6: मैडम। जैसे कि ऐसे किसान जिन खेती के संगे पशुपालन करते हैं, ऐसे किसान के जिनकी खेती नहीं होती आए और डेयरी के हिसाब से पशुपालन करते हैं, तो पशु सुधार से या पशु की नस्ल के सुधार से का तात्पर्य है, हम कैसे ये बात को समझें, तो आप हमारे किसानों के बताओ।
7: जी, सबसे पहले जानना जरूरी है कि नस्ल या ब्रीड क्या है, तभी हम उसमें सुधार कर सकते हैं।
6: जी हाँ।
7: तो नस्ल या ब्रीड पशुओं का वह समूह है जिनके शारीरिक लक्षण जैसे कि कदकाठी, रंग, सींगों का आकार एवं लंबाई और उत्पादक क्षमता एक सी होती है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम पशुओं को अलग अलग नस्लों में परिभाषित करते हैं। इस आधार पर हमारे देश में गौवंश की 53 और भैंसों की लगभग 20 परिभाषित नस्लें हैं, जबकि देश में मौजूद गौवंशी पशुओं में से 80% पशु अवर्णित कुल के और केवल 20% पशु ही शुद्ध यानी परिभाषित नस्ल के हैं। डेयरी उद्योग में गाय एवं भैंसों में नस्ल का विशेष महत्व है। एक शुद्ध एवं उत्तम नस्ल के पशु का प्रदर्शन एवं उत्पादन, चाहे बात दुग्ध उत्पादन की हो या बाहरवन क्षमता की, उनका निसंदेह रूप से अवर्णित कुल के पशु की तुलना में बेहतर प्रदर्शन होता है। हमारे देश में पशुधन की औसत उत्पादकता विदेशी नस्लों की तुलना में बहुत कम है और इसका मुख्य कारण ही अवर्णित कुल के पशु हैं। नस्ल सुधार से तात्पर्य है कि पशुओं का अनुवांशिकी सुधार किया जाए जिससे कि पशु उत्पादक क्षमता में वृद्धि की जा सके।
6: जी, अब मैडम हम जासूस जानबो चाहत आपसे कि पशु नस्ल सुधार कैसे करो जा सका थे, माने हमारे किसान भैया हैं कैसे आगे को प्रेरित हो गए कि जो काम ऐसा हो सकत है।
7: जी, पशु नस्ल सुधार हम विभिन्न अभिजनन विधियों को अपनाकर कर सकते हैं। अभिजनन विधि से तात्पर्य है कि किस नर का समागम किस मादा से करवाएं,
6: जी हाँ।
7: जिससे कि उनसे प्राप्त संतान वांछित लक्षणों वाली हो।
6: जी,
7: इसकी 3 विधियां हैं, संकरण या क्रॉस ब्रीडिंग, जिसमें कि दो से अधिक विशुद्ध नस्लों के जानवरों का समागम किया जाता है। इस अभिजनन में संकरण और इस विधि से उत्पन्न संतान संकरित कहलाती है। संकरण में हम मुख्य रूप से देसी गाय का समागम विदेशी सांड से कृत्रिम गर्भाधान विधि से करते हैं। भारत में मुख्य रूप से HF यानी कि होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी का उपयोग दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए संकरण विधि से किया गया है। और इसी विधि से भारत में दुग्ध उत्पादन में 4-6% की वृद्धि हुई है। दूसरी विधि है चयनात्मक प्रजनन, जिसे कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी कहते हैं। इसमें एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध विशिष्ट नस्ल का उपयोग स्थानीय पशुओं के नस्ल सुधार में किया जाता है। जैसे कि गिर जो कि गुजरात की नस्ल है, उसका उपयोग गुजरात में होगा। और हमारे मध्य प्रदेश की मालवा के क्षेत्र में मालवी नस्ल बहुत मशहूर है, तो उसका उपयोग हम यहाँ करेंगे। तीसरी एवं अत्यंत महत्वपूर्ण अभिजन की विधि है श्रेणी उन्नयन या ग्रेडिंग अप। तो इसमें हम स्थानीय वातावरण के अनुकूल उपयुक्त श्रेष्ठ नस्ल का समागम स्थानीय पशुओं से लगातार 5-6 पीढ़ियों तक करेंगे। और 5-6 पीढ़ियों के बाद हमारे स्थानीय पशु भी जो उन्नत नस्ल के, जैसे उनका अनुवांशिकी सुधार हो जाएगा।
6: जी हाँ। अब मैडम हम कछु ऐसो जानबो चाहते कि जैसे हमने कही कि सरकार की योजनाएं हैं, तो योजनाओं की जहां लो बात आउत है, तो नस्ल सुधार के लाने सरकार की जो गौवंशीय और भैंस वंशीय पशुपालन योजनाएं हैं, उनके बारे में आप हमारे किसान भैया बिन्नान के लाने जरूर बताओ।
7: जी, गौवंशीय एवं भैंस वंशीय पशुपालन योजना का मुख्य उद्देश्य ही पशुओं की नस्ल में सुधार करना है। और इसके साथ ही देश में दूध डेयरी से संबंधित उद्योग का विकास करना है, जिससे कि हमारे पशुपालक भाइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। और इसकी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनमें से प्रमुख है नंदीशाला योजना। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है। प्रदेश के पशुपालकों को अपनी गायों के नस्ल में सुधार हेतु प्राकृतिक गर्भाधान सेवाओं हेतु उन्नत नस्ल के सांड जैसे कि साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा, मालवी, निमाड़ी, केनकथा सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है।
6: जी हाँ।
7: बत्सपालक योजना भी है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय उन्नत नस्ल की गाय जिसका दुग्ध उत्पादन उस नस्ल की अन्य गायों से 30% से ज्यादा है और उसका वत्स उच्च अनुवांशिक क्षमता वाले भारतीय नस्ल के सांड के वीर से पैदा हुआ है, चाहे वो प्राकृतिक विधि हो या कृत्रिम गर्भाधान द्वारा, तो ऐसी गायों के पशु पालकों को प्रोत्साहन हेतु नगद पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। उसके साथ हाँ, ये तो बहुत अच्छी योजना है। और साथ ही उनके जो बछड़े हैं यानी उनके जो बच्चे हैं, उनके संरक्षण के लिए औषधि और पशु आहार के लिए 4 महीने की उम्र तक रुपए सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान भी रखा गया है।
6: जी, तो जो हर महीना देवे को है के?
7: जी, यह हर महीना पशुपालक को मिलेगी
6: 4 महीना।
7: हाँ जी। साथ ही एक और योजना है गोपाल पुरस्कार योजना।
6: जी, जी।
7: इसमें देशी नस्लों के पशुपालन को बढ़ावा देने और अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया है।
6: जी।
7: इसमें गौवंशीय एवं भैंसवंशीय दुधारू पशुओं की उत्पादन क्षमता की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और जिन भी पशुओं का उत्पादन अधिक होगा उन्हें नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और यह प्रतियोगिता संपूर्ण देश में विकास खंड के स्तर पर, जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है।
6: जी, जा तो बड़ी उम्दा बात बताई है मैडम आपने। अब हम और हमारे मन में ऐसी कछु जिज्ञासा बढ़त चली जा रही है कि आपसे और का बूझ ले में हम बूझो चाह रहे हैं कि नस्ल सुधार के लाने कछु राष्ट्रीय नीति सोई है, तो उके बारे में बताओ।
7: जी, राज्य के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय पशुधन नीति जो 2013 में स्थापित की गई है, यह भी नस्ल सुधार के विभिन्न उपायों पर ही केंद्रित है। इस नीति के अनुसार अनुवांशिकी उन्नयन के लिए पशुओं का चिन्हित स्वदेशी नस्लों के साथ चयनात्मक अभिजनन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जानी चाहिए। लेकिन परिभाषित नस्ल के प्रजनन क्षेत्रों में संकर अभिजनन की घुसपैठ से परहेज किया जाना चाहिए। जैसे कि हमारे मालवा क्षेत्र में हमें क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करनी है। इसके साथ ही वे क्षेत्र जिनमें चारा भरपूर है, पशु आहार जो हमारे पशुपालक हैं वो अच्छा पशु आहार दे सकते हैं, केवल उन्हीं क्षेत्रों में हम क्रॉस ब्रीडिंग या संकर अभिजनन कर सकते हैं।
6: हाँ।
7: लेकिन जो हमारे पशुपालक अपने पशुओं को अच्छा आहार नहीं दे सकते हैं, उनके पशु अवर्णित हैं, उनके उस क्षेत्र में हमें परिभाषित स्वदेशी नस्लों का उपयोग ही करना चाहिए।
6: जी हाँ।
7: साथ ही उच्च उत्पादक क्षमता वाले प्रजनक नर पशुओं को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए।
6: जी। अब मैडम हम तनक और जानबो चाह रहे आपसे कि नस्ल सुधार में पशुपालक भैया की का भूमिका हो सकत है।
7: हमारे पशुपालक भाई और बहन ये दोनों ही नस्ल सुधार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं यदि वे कुछ बातों का ख्याल रखें।
6: हाँ हाँ।
7: जरूरी है उनके लिए कि वे हमेशा शुद्ध एवं श्रेष्ठ नस्लों के पशुओं को ही खरीदें। ये पशु हो सकता है थोड़े महंगे हों,
6: हाँ हाँ।
7: लेकिन उनकी उत्पादक क्षमता ज्यादा होगी और इस तरह से हमारे पशु

0: पशुपालक लाभ में ही रहेंगे
1: जी।
0: इसके साथ ही उन्हें अपने पशुओं का रिकॉर्ड रखना चाहिए कि वो कितना दूध देते हैं, वो कब गाभिन हुए, इससे कि यदि किसी पशु का रिकॉर्ड कम है तो वो उसको अपने प्रजनन के दायरे से हटा सके
1: जी।
0: साथ ही यदि मादा पशुओं हैं वो गर्मी में आती हैं तो विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि उनका गर्भाधान हमेशा शुद्ध नस्ल के सांड या उसके वीर्य से करवाएं। यदि ऐसा नहीं है, हमें प्राप्त नहीं है नर इस तरह का, तो हमें उस पशु को बांध के रखना चाहिए बाड़े में, जिससे कि आवारा या नकारा पशु से उसका समागम ना हो पाए। और हमें कभी भी दो संबंधित पशुओं के मध्य प्रजनन नहीं होने देना चाहिए। इस तरह से यदि हमारे जो पशु हैं, हमारे गाय और भैंस है, उत्तम नस्ल की हैं, तो उनका बछड़ा भी उत्तम नस्ल का होगा, तो उसको खुला छोड़ देने के बजाय, जो नर पशु होते हैं उनको खुला छोड़ देने के बजाय, या मांस हेतु बूचड़ खाने भी देने के बजाय उन्हें किसी फार्म पे दे देना चाहिए, जिससे कि वो नस्ल सुधार में अपनी भूमिका निभा सकें।
1: जी हाँ। अब मैडम तनक और हम आपसे जानना चाहते कि चला तो जलो के कृत्रिम गर्भाधान जो का कहावत है और नस्ल सुधार में एक ही का भूमिका मानी जात है।
0: कृत्रिम गर्भाधान ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर का शुक्राणु बिना किसी प्राकृतिक संभोग के मादा की योनि या गर्भाशय में स्थापित किया जा सकता
1: जी हाँ।
0: है। इस विधि में उन्नत नर पशु से वीर को इकट्ठा कर लिया जाता है और वीर को उचित विलयन और अंडे के पीतक यानी योग के साथ मिलाकर तनुकृत कर लिया जाता है
1: जी हाँ।
0: इसके साथ ही इसमें इसको फिर हम मादा की योनि में डाल देते हैं। इस तरह से कृत्रिम गर्भाधान से अनेक पशुओं में हम एक जो नर है उससे हम 10,000 तक की मादाओं को प्रजनित कर सकते हैं। इसलिए ही कृत्रिम गर्भाधान को पशु विकास का मुख्य आधार और विकास की कुंजी कहा जाता है
1: जी। तो डॉक्टर वैशाली खरे मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे किसान विद्या विन्नहन के लाने पशु नस्ल सुधार को महत्व और शासन की जो नस्ल सुधार की योजनाएं हैं उनके बारे में आपने उम्दा बातें बताई। आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: भैया हरो, देखो कल का भाव हमारे गांव में एक कार्यक्रम था जिनमें नेता, मंत्री, विधायक सब आए थे। अब होते भैया हीरा कक्का है बुलाओ गो भाषण देवे के लाने का है कि देखो हमने अभी बताई थी आप औरों को कि गांव में कछु होत है तो हीरा कक्का सबसे आगे रहे थे। अब भी पहले जरूर उनने तो ध्यान नहीं दो, मनो अब भी बिल्कुल कहते ना कि गंभीर हो गए हैं, सिंसियर हो गए हैं, है ना। तो भैया अब उन्हें भाषण देवे के लाने बुलाओ। अब भैया आप और सोच भी नहीं सकत आओ कि कक्का ने भाषण की शुरुआत कैसी करी। आज तो भैया हम का बताएं, अब हम बता ही दे रहे कि उनने कैसी शुरुआत करी। उनने शुरुआत करी भाषण की कि गुड्डन बिन्ना ने आज हमारी आंखें खोल दई। हम तो सुन के बिल्कुल अवाक रह गए, हमने कही झुका कह रहे कक्का आज इनने स्टेज पे फोन में माइक में बिल्कुल हमारा नाम ले ही दाओ और कहने लगी गुड्डन बिन्ना ने हमारी आँखें खोल दई। हम तो बड़े खुश भए और जासोई कहने लगी कि हम जोन पाप कर रहे थे बाल मजदूरी कराबे को, वो पाप से सोई हमें आज बिन्ना ने बचा लो, गुड्डन बिन्ना ने। और जावी कहने लगे कि जोन सीख आज हमने बिन्ना से लई है बा आज हम आप औरों के सामने बते हैं। तो सब बड़ी अच्छे से सुन रहे कि ऐसी का सीख दे दी भैया गुड्डन बिन्ना ने। तो कहने लगी आज अपन सब मिलके बिल्कुल भाषण उनको जो ही चल, तो आज अपन सब मिलके संकल्प लें कि बाल मजदूरी ना कराएं, देखो कछु देना पहले कक्का की हालत कैसी रही कि मोड़ा मोड़न से काम कराते, मनो जब इंसान सोच ले थे ना कि अब हमें बदलने हैं, हमें मतलब बेईमानी नहीं करने हैं, हमें ईमानदारी से काम करने हैं, तो इंसान को बदलवे में बिल्कुल टाइम नहीं लगे। और कक्का ने अपने आप को बदल लो जा बहुत बड़ी बात है। अब उनने अपने भाषण में जई कही कि बाल मजदूरी न करें हैं, बाल श्रम की सूचना संबंधित अधिकारी को दें हैं, बच्चों को विद्यालय भेजवे के लाने प्रेरित कर हैं, उनके परिवारों को प्रेरित कर हैं और सबको जागरूक कर हैं कि सब बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय भेजो, उन्हें पढ़ाई कराओ, हर बच्चा को शिक्षा और सुरक्षित बचपन के अधिकार को सम्मान कर हैं। काय की जीवन को सबसे सुंदर समय बचपन होत है, इखो मजदूरी की बेड़ियों में नहीं शिक्षा और सपनों के पंखों के संगे उड़वे को अवसर मिलने चाहिए। और याद रखो बच्चों के हाथों में किताबें होएं औजार नहीं और उनकी आंखों में सपना होएं लाचारी नहीं। देखो कितनी अच्छी उमदा बात कही कक्का ने। और इके संगे अपन औरों की एक और जिम्मेदारी है जो उनने बताई, अब्बा का जिम्मेदारी है कि नल को खोलो ना छोड़ो, पानी की एक एक बूंद अपन को बचाने हैं, यही से नल को खोलो ना छोड़ो, पाइप लीकेज की सूचना दे हैं और वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा दे हैं। जे बातें उनने करी, फिर भैया हरो नल से पानी आबो, कहन लगे कक्का कि नल से पानी आबो बड़ी बात है, मनो ई के लाने अपनी सोई जिम्मेदारी बनत है कि पानी बर्बाद ना होए। काहे कि जल जीवन मिशन केवल पाइप बिछावे को कार्यक्रम नो है, जो तो जन भागीदारी को अभियान है। हर एक गांव में पानी समितियां बनाई जा रही जो जल स्रोतों की देखभाल और जल आपूर्ति की निगरानी कर हैं। भैया और जरा सोचो, एक ऐसो गांव जहां हर घर में नल हो, परिवार को स्वच्छ पानी मिले, महिलाएं आत्मनिर्भर बने और बच्चा स्वस्थ रह के पढ़ाई करें, तो कैसो लगे, है ना बिल्कुल सपने जैसो। और भैया हरो जो सपना जल जीवन मिशन साकार कर रहो है, मनो भैया हरो एक बात और है, कक्का कहने लगे कि जो सपना तबई हकीकत बन है जब हम सब मिलके जल संरक्षण को अपनी आदत बना है। काहे कि जल की हर एक बूंद अनमोल है, ऐसे जीवन को मोल है, नल से घर घर खुशियां आएं और नई विकास की राह दिखाएं। और भैया हरो देखो पहले का हो तो अबे तो जल जीवन मिशन आ गओ तो अपन को विकास की नई राह दिख रही है, मनो भैया हरो अपन ने वो समय भी देखो है जब गांव में पानी की समस्या बिल्कुल बनी रहती थी, घर वो समय घर घर में नल बिल्कुल नहीं हते, पानी के लाने कितनी दूर दूर भौजी हरें जाती और भैया ना केवल भी पानी लेवे जाती, कितो लंबो लंबो घूंघट डार के जाती, है ना, अब इतनी दूर से पानी ला रही हैं, घूंघट डाली हैं, है ना, और मिल गए रास्ता में कहूँ उनके ससुर तो कब हम उनके जेठ तो कब हम उनके देवरा, तब भी कितनी लजा जाती थी एकदम रास्ते ही में पूरी अपनी जो भौजी हरें, तो अभी कैसी लजात थी, बिल्कुल ओंसे ही लजा जाती थी जैसे अपने जो दीप चंद खातर कर भैया अपने लोकगीत के माध्यम से अपन को बते हैं। तो पहले अपन सुन लेते हैं जो लोकगीत दीप चंद खातर कर भैया की आवाज़ में।

और भैया हरो, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो हम सोच रहे हैं कि आप औरों को बता दें कि 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 जून 2026 को सुबह 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज

तो भैया हरो सूचना हती तो समाप्त हो गई। और देखो आज अपन ने मुथ की बातें करी हमारे हीरा कक्का की, और जे सब बातें करवे के बाद अपन को जई समझ में आई कि भैया हरो देखो छोटे छोटे बाल बच्चों को अपन को उनसे काम नहीं लेने हैं, उन्हें बाल मजदूरी अपन को बिल्कुल नहीं कराने का है। कि देखो बात काम करावे की नहीं है, बात जा है कि जब अपन इन बच्चों को जब इनके पढ़वे लिखवे के दिन है, इनके खेलवे कूदवे के दिन है, इनके शरीर बनावे के दिन जब अपन इनसे काम कराएं तो इमें का हुई है कि एक तो काम पढ़ाई के प्रति इनकी जो रुझान है वो कम हो जाते है, दूसरों कई प्रकार की बीमारियां वे भूखे प्यासे धूप में पानी में सर्दी में सब में यदि अपन भी काम करत रहे हैं मोड़ा मोड़ी अपने छोटे छोटे से तो भी फिर का पढ़ाई कर पाए। और अपन को अपने देश के हर छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित करने हैं, शिक्षित ऐसे करने हैं कि अपनो देश तरक्की करे खूब विकास करे। अब अपन यदि इन बच्चों से काम कराएं तो फिर उनको ना स्वास्थ्य अच्छो रहे ना वे पढ़ लिख पाए। और सबसे बड़ी बात जा है कि जब अपन जो छोटे मोटे काम करके और थोड़े मोटे पैसा जब इन्हें मिल जाते हैं तो जो गलत संगत में भी पड़ जाते हैं, कहूँ गुटखा खान लगे तो कहूँ बीड़ी सिगरेट को इनके असर हो जाते हैं, गलत संगत में फंस जाते हैं। ऐसे इनको जो वो समय जब पढ़ाई को समय होने चाहिए जब भी इन गंदी आदतों में पड़ जाए और फिर जीवन भर भी उतने से पैसा कमा के और गरीबी में जीवन बिताएं तो अपन काय इनके संगे तो बुरो करें। ऐसे हम तो यही कह रहे थे कि जितने यदि आप भी देख रहे हो कि कोई बाल बच्चों से काम करवा रहा है तुरंत उनकी शिकायत करो। और आपसे भी सबसे यही विनम्र अनुरोध है कि भैया और देखो छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी चाहे अपने हों चाहे दूसरों के, वे बड़े मासूम रहे थे, उनसे अपनो जो देश है उनको भविष्य जुड़ो है तो उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित करें, उन्हें अच्छी सीख दें, उनसे काम ना कराएं, बस उन्हें अच्छे काम के लाने प्रेरित करें। और इसके संगे संगे आज अपन ने एक ठैया बात और करी थी कि पानी की एक एक बूंद बचाने है, काय की अपनो जो जल जीवन मिशन है वो यही पे काम कर रहा है कि हर घर में नल हो। तो भैया हर घर में नल हो ई को जो मतलब तो है नहीं है कि अपन खूब पानी बहाए, नल कहूँ चल रहा है या नल खराब हो गया है तो बह रहा हो पानी बहन दो, अपन को ऐसो नहीं करना। यदि आपके तय को नल खराब है ओकी टोंटी सुधरवा लो भैया, रो कहूँ आप देख रहे हो पाइपलाइन फूटी है तो ओकी शिकायत करो। मैंने पानी अपन को बचाने हैं और जो वर्षा को जल बरसात भी आने वाली है, पानी कहूँ कहूँ गिरत भी है आज भी गिरो है तो भैया अपन को जो वर्षा को जल भी संरक्षित करवे के उपाय ढूंढने हैं और संरक्षित करने हैं, तभी अपनो देश तरक्की करे और अपन भी तरक्की करें। तो भैया हरो देखो आज गुड्डन बिन्ना ने इतनी ज्ञान भरी बातें कर दी, इतनी मुद की बातें कर दी कि का बताएं, लेकिन भैया बात ही बात में अब हो रही है चलवे की बिरिया। तो सभी भैया भौजी जी बिन्ना हरों से गुड्डन जी की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय ठीक 8 बजे हैं। सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी।

0: रखी है। भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आए मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
0: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आईं उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
1: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती हैं तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज़्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियाँ संपदाएँ चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुँच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहाँ ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज़ को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज़ वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है। एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है।

0: और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज़ को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में GST का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ

0: खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रोक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था, वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे

जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए, और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सब के प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने, और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी, और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पर लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है, और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2,500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे, और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी, और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की

0: अन्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा, और न केवल भारत के प्रति अपितु तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई। राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पांख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आज़ादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर का की श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियाँ आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किया गया और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सकें, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आज़ादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और

0: हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
1: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
0: जी,
1: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन विषय वहाँ तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
0: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
1: देखिए, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सकें, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे, या तो करुणा का भाव होगा
0: जी,
1: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
0: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
1: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहाँ कहीं भी अवसर मिले, जैसे भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
0: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:35 मिनट हुए हैं। फिल्म संगीत, पहला गीत एक दूजे के लिए फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा

0: विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131

0: 30 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका

0: ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। फिल्म संगीत, श्रोताओं आइए सबसे पहले सुने गीत फिल्म का ये गीत जिसमें आवाज़ है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत। फिल्म है दूसरा आदमी, संगीत दिया है राजेश रोशन ने और गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी।

आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में यह गीत, जिसे लिखा है मजरूह ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

आइए सुनते हैं फकीरा फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। संगीत और शब्द रचना है रविंद्र जैन की।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज में यह गीत। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए, आज सुनिए उस्ताद आमिर खान का गाया राग बागेश्वरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद आमिर खान का गाया राग बागेश्वरी।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं, आपकी खत लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त रेखा। आइए सुनवाते हैं आपके पसंदीदा गीत। पहला गीत सत्य पे सत्ता फिल्म से, आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाज़, गीत गुलशन बावरा का, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सभी की गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक। छत्तीसगढ़ बनिया पारा धमतरी से रामचंद माखीजा, शंकरलाल, राहुल, सविता, स्वाति। खंडवा से यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष, मंदा, राजेश, अंजलि, संदीप, पिंटू और जयश्री खंडाले। आप सभी की पसंद पर आनंद लीजिए इस गीत का।

लीजिए अब सुनिए आप सभी की पसंद पर अगला गीत। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, अस्मा, सालिया, मुस्तबा खान, राउफ भाई, शाहिद। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमती पंचोलिया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दतुरेंगी से भागवत वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी। आप सभी की पसंद पर हमें तुमसे प्यार कितना, इस फिल्म से अगला गीत सुनिए। जुबीन नौटियाल और प्रियाणी वाणी का की आवाज़ है, संगीत राज आशु का।

अगला गीत आप सभी की पसंद पर, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक, रोशन, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव। आप सभी की पसंद पर, लीजिए सुनिए अगला गीत।

हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म से ये गीत है। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़।

अब सुनिए अभिमान फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत SD बर्मन का। पसंद आप सभी की कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा। चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर। बिलासपुर से शिव नारायण, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे। बिलासपुर से ही पूनी राम कश्यप और अंबिकापुर महामाया रोड से अब्दुल वहीद खान, सलमा बेगम खान। आप सभी की फरमाइश पर अभिमान फिल्म का ये गीत।

लिबास फिल्म से अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत गुलजार का, संगीत आरडी बर्मन का, पसंद हमारे इन श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतुरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज। आदर्श नगर मलोट

बेमिसाल। इस फिल्म से लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में अगला गीत, संगीत आरडी बर्मन का, गीत आनंद बख्शी का। पसंद हम तक लिख पहुंचाई है हमारे इन श्रोताओं ने। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और महराज जहां। बस स्टैंड बेलई से लक्ष्मण रैकवार, विनीता, वैशाली, वैष्णवी, दीपेश, लल्लू और ऋषि। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता और प्रिंस। आप सभी की पसंद पर आनंद लीजिए इस गीत का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजे हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई

0: उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. External